प्यारी शाम है ते देखो यार ऑलरेडी वीकेंड आ गया ऑलरेडी एंड ऑफ सितंबर दे दिन चल रहे हैं सो अजकल दिन भी थोड़े जे गर्म सर्द जे चल रहे हैं ते सारे नु हल्के फुल्के मिठे मिठे जे कोल्ड भी हो रहे हैं ठंडा भी लग रही हैं बच्चे स्कूले जा रहे हैं स्कूल तो बाद भी फिर तेन पता ही है भी बच्चे कितने ना कितने थोड़ी बहुत ही एक वायरस या जर्म्स घरे भी लै आते सो चलो कोई गल नहीं जिस अपने इम्यून सिस्टम नो स्ट्रोंग रखो ते माइंड सैट थोड़ा स्ट्रोंग रवे आई थिंक यही मेन गल है हूं तो जिंदगी च यार बड़िया चीजा होंगे ने एडी कि गल है सो लोने रौनक कर दें गल बात नंबर अपना थोन याद ही है तो सुनाओ फिर किमें हो तेरे नाल हस की लिया मुंडिया भी तू तो मगर ही पै गया मेरे हूं जे बीबा तू हसी है तो फिर गल

दोस्तों, शेर कश्मीर माजूर वनान दौत चु मुस्लिम हुंच शकर साफ साफ दौत बे शकर रलयु पान वई हेंद्र टन नाम खोर वायन अहल दीन नाव ये में मुल्क चलयो पान वई मतलब ये जे कशीर हुंद कांत नफर अद सु बट ऐसतन मुसलमान सिख या ईसाई ऐसे यमन ओस पान वई नाम त माजुक रिश्ते गरज कशीर मंज ओस ये दब जिते अकुई मजहब सो ओस इंसानियत सुंद अगर कंस कोंड अजे ब्याक ओस अछर वालव सीत कड़ान एकिस गरस मंज अगर खांदर आसे ब्याक हमसाय ओस तस पनिन रोजन जाए पन्ने गृहस्थुक सामान आयतन थावान बल्कि ओस पान ते एकिस मजूर सिन पट इस्ताद रोजन अशी यह उम्मीद जी ये मिलसार ते ये यकजहती रोजन हमेश गए।

है परदेश में, देश में निकला होगा चांद, अपनी रात की छत पर कितना तनहा होगा चांद। हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, क्या हाल चाल है डोगरियो। जगजीत जी हुंदे बड़ी के मिठी, बड़ी के प्यारी गजल है, ते मेरे चित दे बड़े के कोल है, मैं बड़ी के पसंद है, क्योंकि मैं भी अज अपने डुगर प्रदेश का बार रोनी हाँ। मैं मती ते दूर नहीं हाँ, पर फिर भी जो मी मंदा लगता है ना अपने डुगर प्रदेश का, ये गजल सुननी हाँ ते बड़ी काली पौंदी है चेते। दिल करता है बस इं मेरे पखरू आंगर उड्डिए पुजी जा कुदे मैं अपने देश। बड़ी गल्ला चेता आदि ने अपने डुगर प्रदेश की, तुम भी ध्यान दी होनी है ना। तुम सुनो पहले ये।

चांद बिना हर दिन यूं बीता जैसे युग बीते हों, मेरे बिना किस हाल में होगा, कैसा होगा चांद, अपनी रात की छत पर कितना तन्हा होगा चांद, हम तो हैं परदेश में, देश में निकला होगा चांद। वेलकम बैक फ्रेंड्स, टोकरी रेडियो सदा स्वागत है। ते अस दे गल करा दे है देश कोला दूर परदेसे दी, ते साड़ियां मजबूरियां ने कि अज अस सारे के इन्ने दूर आई बैठे ने आ, पर वो जेड़ा इरख है अपने प्रदेश करने, वो जेड़ा मिट्टी दी जेड़ी खिच है, वो सब अज भी कुदे ना कुदे साड़े दिले च धड़का दी है। देखो चन्न ते सूरज इक्को है, इत्थे भी उहे चढ़दा है ते उत्थे भी उहे चढ़दा है, पर की हुंदा ऐसा कि ये जेड़ा परदेश दा चन्न है वो अपना नहीं लगता, वो जेड़ा साड़े उत्थे चढ़दा है चन्न लगता है बस हो गया अपना है। बड़ा दिल करता है जदों काम दा शामी आने आ कि कोई सिरे पर हाथ फेर उड़े बापू आंगर ते मां आंगर पुछी लै कि पुत्र रोटी खाधी कि नहीं खाधी। बड़ी चेता आंदी है घरे वाली, बड़ा चेता आंदा है मेरा वो भरा, ते बड़ी चेता आंदी है निक्की भैन जिहदी रखड़ियां हुण सिर्फ कुरियर दे रस्ते पुजदियां, ते बड़ा गै अरसा होइया वो रखड़ी हथे पर बन्ने दे। ते ये ने कुछ बड़ी सारी मिक्स फीलिंग्स ने जो रोज गए सारे परदेसियों दे मने चांदियां ने, पर फिर वो अपना दिल मजबूत करिए कम्मे काजे च लगी पौंदे ने।

रबी की फसल लिए रहा देखते खेत, रोटी हमको खींच लाई गांव से ये परदेश। ते कुछ ये नया फलनामा है उन परदेसियों दा, उन दा दुख। लोग सोचते ने कि बड़े नोट कमा दे बाहर बैठे दिन, पर कोई उन्दे दिले दा भी पूछे, दिवाली पर दिए ते वो भी बाल देन, पर वो रोशनी और जगमगाहट जेड़ी उन्दे ग्राएं होंदी है, जेड़े उन्दे अपने प्रदेश जो होंदी है, वो मजा नहीं है। होली पर सगन ते वो भी करी लेंदे ने टिक्का लाइए, पर वो गुलाल दी जेड़ी खुशबू अपने प्रदेश च होंदी है ना, वो बाहर प्रदेश च नहीं है। बस ये नया कुछ फर्क होंदा है अपने देश ते परदेसे दा। बड़ा चेता आंदा है मैं कि वो आंगन वो बेड़ा मेरा, पर के करचे मजबूरियां कुछ ये नहीं है ना। ते उन मैं दियो इजाजत, मैं भी परती तुंदी सेवा च हाजिर होगी। नमस्कार दोस्त।

0: समोसा एंड स्वीट फैक्टरी जिथे पाजी दिया सारिया आइटमा $4.75 पर पाउंड तो शुरू ने। बेसन, पिस्ता, रसगुल्ले 100% कैनेडियन मेड, टॉप क्वालिटी स्वीट्स हुन तीन लोकेशंस तो सर्व कर देने। 2 इन ब्रैम्पटन, 1850 एल्बन रोड, ईटोबीको। वधेरे जानकारी ले कॉल करो 416-213-1165।
1: रोकी तू अपनी इंश्योरेंस किस तो करवांदा यार?
2: ओए कल्ला मैं नहीं, अपनी कम्युनिटी दा हर बंदा इंश्योरेंस एक्सपर्ट मोना मेंगी जी कोल करवांदे ने।
1: वाह यार, नंबर ता दई मोना जी दा।
2: हां जी, तुसी भी नोट करो, इंश्योरेंस कोई भी होवे,
3: इंश्योरेंस फॉर यू दी मोना मेंगी जी।
2: जेडे लाइफ इंश्योरेंस, क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस, सुपर वीजा इंश्योरेंस अते हर तरह दी इंश्योरेंस दे लई भरोसेमंद नाम है। हुणे कॉल करो 416-509-1509 ते।
3: याद रखो, मोना मेंगी फ्रॉम इंश्योरेंस फॉर यू,
2: 416-509-1509
3: और विजिट insuranceforyou.ca।
4: ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਜੇ ਏਜ਼ ਡਰਾਈਵਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਤੇ ਵਧੀਆ ਪੇਮੈਂਟ ਦੀ ਭਾਲ, ਤਾਂ ਡਕਾਰ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਵਧੀਆ ਪੇ ਪੈਕੇਜ, ਖੂਬਸੂਰਤ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਸੈਲਰੀ ਤੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਵੀ ਨਾਲ, ਸਟੇਬਿਲਟੀ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਡਕਾਰ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ 437-242-3158। दुनिया विच किते भी घूमन फिरन लई या सस्ते टूर पैकेजेस लई, याद रखो कटारिया टूर्स एंड ट्रैवल 905-678-1200 कटारिया टूर्स एंड ट्रैवल दो लोकेशन तो अपनिया सेवावां प्रदान करदे ने। 2883 डेरी रोड ईस्ट मिसिसागा, सेकंड लोकेशन 4550 एबनेजर रोड ब्रैम्पटन।
5: Stargate Logistics, North America di one of the fastest growing company. Hire kar rahe ne AZ drivers. Jekar tuhanu vi hai kam di pal, ta aaj hi sampark karo Stargate Logistics de naal. Work locally ya cross border. Serve karde ne GTA, Midwest, Montreal te North America de vich. Stargate Logistics, aaj hi call karo 905-564-9292 905-564-9292।
4: ओ जी, हुण तुसी भी देर ना लगाओ, ग्रीन वैली सुपरमार्केट आओ। सुपर डील्स दे नाल ग्रोसरी ते डॉलर बचाओ। वेजिटेबल, फ्रेश फ्रूट्स, मीट, चिल्ड बियर, डाइन इन ते टेक आउट भी कर सकते हो। देर रात तक हफ्ते दे सत्तों दिन खुलता है। तंदूरी बाइट चाट एक्सप्रेस विच बैठ के वधिया स्वादले फूड दा मजा उठाओ। वधेरे जानकारी ते ऑर्डर लई कॉल कमाओ 905-913-1666, 905-913-1666 या पहुंचो 11665 मैकवीन ड्राइव मेफील्ड दे नुक्कर ते।
6: CCCA लई कर्जा माफ करवाना बस इन्ना ही आसान है। कलेक्शन कॉला, पावर सेल नोटिस, क्रेडिट कार्डा दा उधार, सरकार वलो टैक्स दी मांग, तुसी इन्ना सब तो ही बिना बैंकक्रप्सी कीतियां छुटकारा पा सकदे हो।
7: जे तुसी भी कर्जे तो परेशान हो तां तुसी हुणे ही सानू कॉल कर सकदे हो, असी तुहाडी परेशानी दूर कर सकदे हां।
6: कर्जे तो परेशान, असी करांगे कम आसान।
4: हर तरह दे टेस्टी इंडियन फूड अते स्वीट्स ले, याद रखो द्वापा स्वीट एंड रेस्टोरेंट।
5: चार लोकेशंस तो तानु सर्व कर देने, 100% प्योर वेजिटेरियन ते फ्रेश फूड एंड स्वीट्स ले द्वापा स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट। करो डाइन इन, टेक आउट, टिफिन सर्विस दे नाल नाल केटरिंग अक्रॉस GTA। बल्क ऑर्डरली साडी फैक्ट्री विजिट करो। टॉप ऑटो कोलिजन प्रोवाइड कर देने, फास्ट कोलिजन रिपेयर एंड ऑटो पेंटिंग जॉब्स। Complete collision repair from towing your car to applying the finishing touches. You can count on us. We are providing end-to-end assistance. 24 ghante towing

0: Mohan. Contact us at richmohan.com.
1: मैं बलजिंदर सिंह नहल अपने ब्रैम्पटन ने सब कुछ देखा है सड़कां तो पार्कां तक ट्रैफिक तो सिटी सेवावां तक क्राइम तो करप्शन तक चंगा शहर सिर्फ वादियां नाल नहीं काम नाल बंदा है तुहाडे मुद्दे सिर्फ चोणां तक नहीं सिटी हाल तक लेके जाना मेरी जिम्मेवारी है वोट फॉर चेंज वोट फॉर बलजिंदर सिंह नहल सिटी काउंसलर कैंडिडेट वार्ड 9 एंड 10
2: ऑथराइज्ड एंड पेड फॉर बाय द कैंपेन ऑफिस ऑफ बलजिंदर सिंह नहल

तो गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब ते नमस्ते सारे मेरे प्यारे रेडियो लिसनर्स नु, मेरी पंकज पंजाबी की तरफ से एक प्यार भरी सत श्री अकाल। आप सुन रहे हो जी रेडियो आवाज 5:30 AM पे। आज का दिन अच्छा रहेगा, बहुत सारी बातें करेंगे जी, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे, बहुत सारे डीले लेके आएंगे जी। तो सुनते रहिए जी रेडियो आवाज को, मेरे साथ आपका प्यारा होस्ट पंकज पंजाबी।

चलिए जी, दिन की शुरुआत करते हैं जी। आज है जी मंडे, मंडे लॉन्ग वीकेंड का आज तीसरा दिन है जी। मंडे थैंक्सगिविंग का डे है, तो सारे जो भी लिसनर्स हैं दो दिन आराम कर लिए, चलो मंडे आ गया, मंडे की स्टार्ट करते हैं। मंडे जी, चलो दिन की शुरुआत है, बहुत बढ़िया मौसम है, थोड़ी ठंड ज्यादा है तो होता है कि थोड़ा गर्म और वार्म रहे, लेकिन थोड़ा चलो 9 बज गए हैं जी, घड़ियों की स्टूडियो की घड़ी में बज चुके हैं 9:06। तो चलिए जी, मेरे साथ आज का सफर सुहाना शुरू करते हैं जी। रेडियो आवाज पे आज अपना साथ बना रहेगा जी 10 बजे तक। रेडियो आवाज आप सुन सकते हो जी एवरी डे मॉर्निंग 9-10 और सैटरडे 10 बजे से 1 बजे तक। और रेडियो लिसनर्स जो भी हमारे रेडियो 5:30 AM सुन रहे हैं, आप हमें सुन सकते हो जी ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ कनाडा में। ईस्ट में आप लंदन सारनिया से लेकर वेस्ट में आप बोमनविल ओशो वहां तक हमें सुन सकते हो। नॉर्थ में बैरी से लेके नायग्रा फॉल्स तक भी आप हमें सुन सकते हो। अगर आप यूएस में हो तो न्यूयॉर्क, पेंसिल्वेनिया, वॉशिंगटन, यहां पर भी आप हमें सुन सकते हो। अगर आपको डायरेक्ट फोन कॉल करके आपको सुनना है जी 416-477-2040 पे आप डायरेक्ट लाइन पे आप हमें आज सुन सकते हो जी। तो आप सुन रहे हो जी आपका प्यारा शो रेडियो 5:30 AM पे रेडियो आवाज। आज का दिन चलो बहुत ही सुहाना है। आज अपना जो रनवे नंबर 2 है वहां पे काफी सारे फ्लाइट्स चल रहे हैं जी, तो इसका मतलब जी हॉलिडे सीजन्स के लिए फ्लाइटें बढ़ चुकी है। दूसरी तरफ से जी डेयरी रोड काफी आराम से चल रहा है, सारे लोग आज आराम कर रहे हैं, लेकिन अपना शो सुनते रहिए और हमारे साथ जुड़ते रहिए। रेडियो आवाज आप सुन रहे हो जी, आपका प्यारा शो है रेडियो आवाज में। आज हम बहुत सारी बातें करेंगे, लेकिन सबसे पहले शुरुआत करते हैं जी दिन का। दिन का शुरुआत सारे लोग कैसे करते हैं जी, चलो जी किसी को अपने रब को याद करके। सुबह जो हमने शब्द सुना बहुत ही बढ़िया शब्द है, इससे काफी सारी मोटिवेशंस मिलती है, काफी सारी आशीर्वाद मिलते हैं। इसके साथ में जब आप रब के साथ जुड़ते हो, एक स्पिरिट होता है और एक जुड़ाव होता है, इससे एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। रब के साथ जुड़ने के लिए एक शांत माहौल चाहिए, एक अच्छा सा क्लीन माइंड चाहिए। आपका माइंड एकदम शांत जब हो तब आप सबसे ज्यादा रिसीव करते हो। इसीलिए आई थिंक काफी सारे लोग और आप बुजुर्ग, आप कभी भी कहते हो अगर आपको परमेश्वर की आराधना करनी है, आपको उनको याद करना है, तो सुबह का वक्त बहुत ही बढ़िया होता है, बिकॉज सारे लोग सोए हुए थे, सृष्टि शांत हो जाती है, चहल पहल कम होती है। वहां पे आप रहिए, अपने परमेश्वर को याद रखिए और उनके साथ जुड़िए। जुड़ने से एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, उस एनर्जी को आप पूरे दिन में आप डिस्ट्रीब्यूट करते रहो। बिकॉज क्या होता है कि अपने आजू बाजू में काफी सारी चीजें होती है, कभी अच्छी चीजें होती है, बहुत अच्छी चीजें भी होती है, उसकी कुछ बुरी चीजें भी होती है, लेकिन उसमें से हमें अपनी जो जिंदगी है वो जीनी है एक पॉजिटिविटी के साथ। पॉजिटिविटी लेके आने के लिए हमको चाहिए क्या कि एक कोई स्पिरिचुअल एनर्जी हमें गाइड करनी चाहिए, एक साथी चाहिए, जो भी हो आपके लिए एक बैकअप सपोर्ट चाहिए। वो सपोर्ट आप परमात्मा हो सकता है, कोई आपका फ्रेंड हो सकता है, कोई भी हो सकता है, लेकिन अगर आप मुझे पर्सनली पूछो तो क्या है, तो मेरी पर्सनल ये है कि मैं सुबह सुबह जब भी उठता हूं मैं ये कोशिश करता हूं कि मैं अपने परमेश्वर के साथ सुबह सुबह जुड़ूं और एक दिन में जो आशीर्वाद है उसके साथ अपनी शुरुआत करूं। तो ऐसे ही मैं आज सोच रहा था कि चलो एक कोई अच्छा सा आपको एक गाना सुनाता हूं और उसके साथ हम आज का दिन शुरू करते हैं जी। ये मेरा काफी अच्छा फेवरेट सॉन्ग है, सूफी सॉन्ग है, शायद आपको भी पसंद आए, तो आपके लिए खास मेरे लेडीज लिसनर्स के लिए ये सॉन्ग आपके लिए।

0: तो बहुत ही बढ़िया गाना है जी, मुझे तो ये काफी पसंद है। सूफी सॉन्ग है, बहुत ही अगर आप यू नो प्रॉपरली म्यूजिक सिस्टम के साथ सुनो तो ये तो बहुत ही बढ़िया फील आता है उसका, और मतलब एक कनेक्टिविटी आपको मिल जाती है आपके रब के साथ। चलो जी, दिन की शुरुआत हो चुकी है जी। चलो 9:11 हो चुके हैं स्टूडियो की घड़ी में। चार अपने लिसनर्स कहाँ कहाँ पीछे, चलिए जी अटेंडेंस लगाइए आप, और स्टूडियो के नंबर है 9056733337, 9056733337 पे आप हमें कॉल कीजिए। और सारा चलो मैं सुनना चाहता हूँ, लॉन्ग वीकेंड पे आप क्या क्या कर रहे हो, कहाँ पे जा रहे हो, फैमिली के साथ हो आप, मस्त बैठ के गरम गरम चाय और पकोड़े खा रहे हो, कि कहीं बैठे हो, कहीं दोस्तों के साथ घूमने गए हो, कहीं मॉर्निंग वॉक पे हो, जॉग पे हो, जो भी है जी आप, मैं आपके सुनना चाहता हूँ जी। चलिए कॉल करिए 9056733337 पे, 9056733337 पे। चलिए जी, ब्रैम्पटन, मिसिसागा, बर्लिंगटन, नायग्रा फॉल्स, बोवनविल, कहाँ पे है लोग, चलिए जी अटेंडेंस लगाइए 9056733337 पे कॉल कीजिए। और आपने चलिए बताइए आप क्या क्या और क्या इंटरेस्टिंग चीजें कर रहे हो। इसके साथ में मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग दो चीजें कुछ आपके साथ शेयर करने वाला हूं, और जो भी आज एक स्पेशल कॉन्टेस्ट होगी जहां पे आपको एक स्पेशल सरप्राइज गिफ्ट मिलेगा आज। चलो शो सुनते रहिए और हमारे साथ बातें कीजिए। चलिए अब देखते हैं क्या शो बढ़ता है, कैसे होता है और आप किसको गिफ्ट मिलता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज आज होने वाली है, तो कॉल कीजिए 9056733337 पे।
1: फूड डिलीवर करदे आ कस्टमर्स नूं ते उनां दे रिव्यूज या व्यूज अक्सर ए हुंदे ने।
2: ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਮਿਸਿਸਾਗਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੇਟਰਿੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀਗੀ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਤਵਾ ਕਿਚਨ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ 50 ਬੰਦੇ ਦੀ ਕੈਟਰਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕਰੀਬਨ 55-60 ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਕੇਟਰਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਅਸੀਂ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੈਟਰਿੰਗ ਕਰਾਓ ਤਵਾ ਕਿਚਨ ਤੋਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।
3: ਤਵਾ ਕਿਚਨ 50 ਸਨੀਵੇਲ ਗੇਟ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਮਾਊਂਟਨੈਸ਼ ਐਂਡ ਬਵੇਡ ਦਾ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ, ਜਾਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ www.tawakitchen.ca। 905-790-1699,
0: जी तवा किचन पहुंची जी। वीकेंड हो चुका है, मास्टर इन केटरिंग। तवा किचन की दो लोकेशन है जी, 50 सनीवेल गेट पे और चार लोकेशन है टोटल। 50 सनीवेल गेट पे है जी, दूसरी एक है आप 30 रेमलर ड्राइव पे, और 3430 वेस्टर्न रोड पे। तवा किचन प्रिपरेशन है घर जैसी और टेस्ट है ढाबे जैसा। तो अगर आपको केटरिंग करवानी है, वीकेंड है, लॉन्ग वीकेंड है, आज आपका मन नहीं है खाना बनाने का, चलो लॉन्ग वीकेंड है क्यों करना है, कल से तो अपनी रेगुलर लाइफ चलने स्टार्ट ही होने वाली है, तो चलिए तवा किचन से केटरिंग करवाइए। सबसे बेस्ट मॉर्निंग का टाइम है, 10 बजे खुल जाएगा और सवेरे 6 बजे तक खुला होता है जी तवा किचन। और सुबह सुबह सुबह आपको जाना है तो खाइए उनके परांठे। परांठों में जी उनका सबसे बढ़िया पराठा है जी दारा सिंह पराठा। क्या पराठा है जी, गजब मजा आ जाएगा। 4 टॉपिंग्स वाला पराठा है, आप इतने बड़े साइज का होगा, उसके साथ रायता मिलेगा, अचार मिलेगा और मस्त गरम गरम चाय। और इसकी जो डील चल रही है जी दारा सिंह पराठा पे जी, 2 दारा सिंह पराठा उसके साथ 2 चाय आपको मिलेंगे जी 1599 में। जी सही सुना आपने, 1599 में आपको मिलेंगे जी 2 दारा सिंह पराठे, 2 चाय और उसके साथ जो पराठे के साथ आपको रायता अचार मिलेगा जी 1599 में। तो जल्दी से पहुंचिए जी तवा किचन, ये ओपन होता है 10 बजे, तो 10 बजे पहुंचिए और दारा सिंह पराठा खाइए। और 1 फुट लंबा अमृतसरी कुलचा खाइए, छोटी कुलचे नहीं कुलचा कहते हैं जी, कुलचा, बड़ा कुलचा, बहुत ही बढ़िया फीलिंग होगी, मस्त क्रिस्पी टॉपिंग, क्रिस्पी एकदम तंदूर में बनता है, उसके साथ में छोले और अचार खाइए। तो पहुंचे तवा किचन, और अगर आप केटरिंग करवानी है 5 बंदों से लेके 500 बंदों की केटरिंग, ये आप बिना झिझक किए इनसे मंगा सकते हो, और ये 2 घंटे पहले भी अगर आप इनको बताते हो तो ये केटरिंग रेडी कर देते, तो इतनी इनकी कैपेबिलिटी और कैपेसिटी है। और जब भी आप केटरिंग करोगे तो फूड का टेस्ट बहुत ही बढ़िया आपको मिलेगा और बढ़िया रेट पे मिलेगा। तो कॉल कहाँ पे करना है जी, तवा किचन पे 905-790-1699 पे कॉल करना है जी, 905-790-1699 पे आप कॉल करके केटरिंग भी बुक कर सकते हैं जी। जो वीकेंड पे है, वीकेंड चल रहा है जी, केटरिंग्स बुक करवाइए और उनके साथ केटरिंग और डाइनिंग भी कर सकते हो, आप वहां पे भी जा सकते हो। तो वहां पे भी बहुत अच्छी डील्स लगी हुई है, बहुत ही अच्छे इनके ग्रेवीज है दारा से। अगर आपको मेन कोर्स में कुछ खाना है तो आप कढ़ाइया ट्राई कर सकते हो जी, जो इनकी पाकिस्तानी और इंडियन फ्यूजन के साथ जो बनी हुई वो कढ़ाइया है। उसके साथ साथ में जी गोट करी ट्राई कीजिए और इनका स्पेशल तवा चिकन ये ट्राई कीजिए, तवा किचन का तवा चिकन ट्राई कीजिए जी फ्रॉम तवा किचन। तो जी पहुंचना कहाँ पे जी, 50 सनीवेल गेट पे, माउंटेनिश एंड बोवेड का इंटरसेक्शन है। नंबर टू कॉल इज 9057901699 पे कॉल कर सकते हो। और दूसरी इनकी लोकेशन है जी जो 30 रेमलर ड्राइव पे, वहां पे भी जी आपको सेम टेस्ट मिलेगी, सेम डील्स मिलेंगी और इनकी 10 आइटम लगी हुई है जी 1299 पे। तो जरूर कॉल कीजिए तवा किचन, तवा किचन, तवा किचन। चलिए जी आज का शो बढ़ चुका है आगे, रनवे नंबर 2 पे वेस्ट जेट की फ्लाइट उड़ान ले रही है। डेरी रोड थोड़ा थोड़ा बिजी शुरू हो गया है, तो मुझे लगता है कि चलो लोग आज अभी स्टार्ट एनर्जी लेके, सारे जो गाने सुन के एनर्जी लेके आगे बढ़ चुके हैं और चल रहे हैं, तो डेरी रोड काफी सारा बिजी लग रहा है अभी। चलिए मैं आज कुछ एक छोटी सी बात करना चाहता था। जैसे आज मंडे है, चलो वीकेंड था, वीकेंड में आपने कुछ प्लान तो किया ही होगा कि कहाँ जाना है, कैसे करना है, क्यों करना है। लेकिन मेरा एक सवाल है कि ये प्लानिंग क्यों जरूरी होती है, कि मतलब प्लान क्यों करना होता है। लोग कहते हैं क्या है, चलो यार सुबह देखते हैं क्या, जैसे होना है होना है। मैं एक छोटा सा किस्सा सुनाता हूँ कि प्लानिंग मेरे हिसाब से, चलो जी आप जो भी सुन रहे हो, हर एक जो भी सुन लिसनर है वो भी मुझे आप बता सकते हो, चलो जी आपका क्या मानना है इस पे, प्लानिंग क्यों जरूरी होती है। चलो फॉर एग्जांपल मैं, मुझे कहीं जाना है, चलो लॉन्ग वीकेंड है, मैंने सोचा चलो यार फैमिली को कहीं घुमाने ले चलते हैं, सैटरडे संडे मंडे, मैं सोचता हूँ चलो कल सुबह निकल पड़ते हैं, कहीं जाना है, चलो फॉर एग्जांपल ब्लू माउंटेन चलना है, तो ब्लू माउंटेन जाना है, तो मैंने चला चलो सुबह उठते हैं, फैमिली को बोला चलो पैकिंग, हाँ ठीक है जो करने ही कर लो, मैं फिर सुबह उठे, फिर सुबह निकल गए, जाते जाते जाते फिर होटल बुकिंग करना था, चलो होटल पे फ़ोन करना स्टार्ट किया मैंने, तो होटल पे फ़ोन करना स्टार्ट किया, चलो एक होटल बोला चलो यार वी आर फुल्ली बुक्ड, नंबर टू होटल वी आर फुल्ली बुक्ड, ओ तो क्या करना है, तो प्री बुक करना है। तो ऐसे सेक्शन होते हैं कि जहाँ पे आप बुकिंग करना चाहते हो लेकिन आपको मिलती नहीं है। नंबर टू आप चलो वहाँ पे जैसे तैसे करके पहुँच गए, और फिर आप पहुँचे फैमिली के साथ, आप पहुँचे कहाँ जाना है, कौन से है कुछ पता नहीं है, फिर आप जाके वहाँ पे गूगल मैप ढूंढ लेते हो, तो गूगल प्ले में टाइप कर लेते हो बेस्ट प्लेसेस टू विजिट इन ब्लू माउंटेन, ब्लू माउंटेन पे पहुँच गए, वहाँ पे देखना क्या है पता नहीं है, आप जहाँ वहाँ पे जाके पहुँचे फिर ढूंढना चालू करते हो, गूगल रेटिंग्स पढ़ते हो कौन सा रिकमेंडेड है, फिर कोई ये ऐप पे चले गए, वो ऐप पे चले गए, ये इन्फॉर्मेशन ढूंढी, फिर जाके आपको 2 घंटा आपका टाइम वेस्ट होता है। फिर आप कहीं पे एक जगह पे जाते हो, वहाँ पे पहुँचते हो, चलो अरे यार ये क्या चीज़ है, ये तो मुझे पसंद नहीं है, कोई मतलब अच्छी चीज़ नहीं लग रही, कुछ इट्स नॉट अ ब्यूटीफुल प्लेस कि मैं फैमिली को ले चलूँ, चलो और एक ढूंढते हैं गूगल पे, फिर आपका आधा घंटा चला गया, फिर कहीं चले गए, तो मतलब ऐसे टाइम वेस्ट ज़्यादा होता है। ऐसे मेरे साथ काफ़ी बार हो चुका है। उसके बाद फिर चलो आप होता है थक वक के, चलो कुछ खाना खाने चलते हैं, खाना खाने चलते हैं, निकलते हैं यार क्या कहाँ पे खाना खाएं, गूगल पे ढूंढ लिया, चलो अच्छा कोई होटल दिखा, रिव्यूज दिखे, गए चलो खाना खा लिया, लेकिन फिर लगा नहीं मजा नहीं आया। लेकिन तो मतलब ऐसा होता है कि जो भी आप प्लान करते हो या फिर जो भी आप सोचते हो कि जाके आप एक अच्छी जगह पे जाके आपका अच्छा बेटर टाइम स्पेंड करना है, या फिर चलो कहीं आप मीटिंग में जा रहे हो, मीटिंग में जाना है, कल मीटिंग में क्या रिक्वायर्ड है पता नहीं, आप हमने प्लान नहीं किया, चलो कल देखेंगे सुबह, मेरे लैपटॉप में काफ़ी सारा डाटा पड़ा हुआ है, मैं वहाँ से निकाल लूँगा, फिर मीटिंग होती है 1 घंटे की, फिर आपका आप पहुंचते हो, फिर बाद में पता चलता है चलो अरे ये इन्फॉर्मेशन तो मेरे पास है ही नहीं, वो इन्फॉर्मेशन मेरे पास तो है ही नहीं, तो फिर मैं वहाँ पे थोड़ा गड़बड़ा हो जाता है। तो इसीलिए कि प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, प्लानिंग कीजिए, प्लानिंग करते रहिए, बिकॉज ये काफ़ी सारे आप सुनते होंगे यहाँ पे कि जो लोग प्लानिंग ज़्यादा करते हैं वो लड़ाई में कम जख्मी होते हैं, उसका एक स्पेसिफिक पीपल हु प्लान मोर दे ब्लीड लेस इन द वॉर, तो ऐसा कहते हैं, क्योंकि बिकॉज आप जैसे प्लानिंग करते हो, प्रैक्टिस करते हो उसके ऊपर, फिर आप जब आपकी बारी आती है कि जब टाइमिंग आता है तब आप प्रॉपरली परफॉर्म कर पाते हो, राइट। अगर कोई मीटिंग है, अगर आप कहीं जा रहे हो किसी के साथ कुछ इन्फॉर्मेशन लेने, चलो कहीं पे आप घूमने ही चले जा रहे हो, तो वहाँ पे अगर आप प्रॉपरली प्लान करते हो तो आपको जाना है 1 हफ्ते पहले या 15 दिन पहले, आपको पता है लॉन्ग वीकेंड है, लॉन्ग वीकेंड पे तो लाइन सारे हो जगह बिजी होनी होनी है। अगर आपको पता है ऐसा होना है तो आप पहले उसमें प्लान करके चलिए, हफ्ते भर या फिर 10 दिन पहले बुकिंग करिए, कीजिए, होटल बुक कीजिए, वहाँ पे जाके आपको प्रॉपरली आपके फैमिली के साथ फ्रेंड्स के साथ जा रहे हो तो आपको अच्छे से अकोमोडेशन मिल जाएगी, उसके साथ में कहाँ कहाँ पे घूमना है ये आप प्रॉपरली सर्च करके प्लान करके चल सकते हो, उसके साथ में कहाँ विजिट करोगे, कहाँ रुकोगे, सारी चीज़ें हो जाती है। और सबसे मज़ेदार चीज़ फॉर एग्जांपल, चलो आप कहीं दूर जा रहे हो, लेट से 500-600 किलोमीटर दूर जा रहे हो और आपके पास मतलब पता नहीं आपने गैस भरी नहीं है, सुबह आप निकल पड़े गैस डाली नहीं, अगर आप आपको पता है चलो बीच में गैस आगे मिलनी नहीं वाली 200 किलोमीटर, आपकी गाड़ी का माइलेज बचा हुआ है जो 100 किलोमीटर है, तो फिर वहां पे भी आप एक बार फंस सकते हो। तो प्लानिंग करनी बहुत ही ज़रूरी है, आप प्लानिंग करते रहिए। और मतलब प्रॉपर प्लानिंग से मैं ये नहीं कहता कि अगर आप लास्ट मोमेंट पे प्लान करते हो तो प्रॉपरली शेड्यूल होता नहीं है, होता है, हो जाएगा कभी कभार, मतलब आपका चलो आप अगर आपको कुछ चीजें पता है आप गए हो वहां पे तो कुछ चीजें आप यू कैन डू इट बेटर, बट लेकिन अगर आप प्रॉपरली प्लान करके आगे चल सक जा रहे हो तो यू कैन हैव अ बेटर टाइम और मतलब अच्छे से आप वहाँ पे इंजॉय कर सकते हो, फिर जो भी आप जाने करने जा रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो, मीटिंग जा रहे हो, सबसे बढ़िया चीज़ होती है। चलिए जी, जो भी मैं ये तो मतलब मेरा ओपिनियन है क्योंकि मेरे साथ काफ़ी बार ये हो चुका है, तो यही मैं आपसे भी सुनना चाहता हूँ। चलिए जी, आप बताइए आप कैसे प्लान करते हो, या फिर आपकी आपके साथ कोई ऐसे मजेदार किस्सा कुछ हुआ है तो आप मुझे फोन करके बताइए, 9056733337 पे मुझे कॉल करके बताइए क्या आप कैसे प्लान करते हो, क्या करते हो, या फिर कोई मजेदार किस्सा हो जो आपके साथ हुआ है मैं आपसे जी जरूर सुनना चाहूंगा जी, 9056733337 पे। चलिए जी मेरे प्यारे लिसनर्स, रेडियो आवाज के 5:30 AM के लिसनर्स, मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ जी, 9056733337 पे कॉल कीजिए और जल्दी जल्दी अपना ओपिनियन शेयर कीजिए कि क्या हो रहा है, कैसे आप करते हो, या फिर कोई मजेदार किस्सा ऐसा बताइए जिस तरह से आपने वहां पे कुछ मजेदार चीजें हुई और आपने कोई एक बहुत ही इनोवेटिव चीज करी, उसके साथ आप आपका प्लानिंग जो था सक्सेसफुल हो गया। और चलिए जी, स्टूडियो की घड़ी में बज चुका है जी 9:23 और ये सुनिए,
4: रियल एस्टेट दुनिया बिचाओ अपने सपने अनु सच कर बखाओ, फेयर डील रियलिटी इंक ब्रोकरेज नाल हाथ मिलाओ,
5: रियल एस्टेट दिया बारीकियां सीखो ते कंपनी वालों क्लाइंट्स लीड्स भी पाओ,
4: फेयर डील रियलिटी इंक ब्रोकरेज नवे एजेंट हायर कर रहे ने,
5: आज ही कॉल करो फेयर डील दे ब्रोकर ऑफ रिकॉर्ड हरदीप पंदेर नु
4: 9056713 2000 9056712000,
5: फेयर डील नाल हाथ मिलाओ अपने सपने अनु सच कर दिखाओ।
6: याद है मेनू जो तो मेरा फर्स्ट एक्सीडेंट होया सी, कितनी परेशान हो गई सी मैं, इंश्योरेंस नाल डील करना, गड्डी पेंट कराना, कितने झंझट। थैंक्स कर दिया मैं स्पीडएक्स ऑटो कलिजन वालों दा जिन्ना ने मेरी इंश्योरेंस नाल खुद डील किया, रेंटल कार भी दी ते मेरी कार नू बिल्कुल नवी वर्गी बना दिता। ते तुसी भी पहुंचो स्पीडएक्स ऑटो कलिजन 181 Rutherford Road South Unit 11 ते या कॉल करो 416-277-9221 416-277-9221।
7: ਘਰ ਨੂੰ ਪੇਂਟ ਕਰਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੇਂਟਰਸ ਤੇ ਪੇਂਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨੰਬਰ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਰਿਐਲਿਟੀ ਪੇਂਟਿੰਗ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੁਣੋਗੇ? ਫਾਇਰ ਸਟੇਸ਼ਨ, 5-star ਹੋਟਲਸ, ਬਿਲਡਰ ਦੇ ਕਸਟਮ ਕਾਰਸ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੇਂਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਨੂੰ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਪੇਂਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੇਟ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। 7 ਸਾਲ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਫ੍ਰੀ ਐਸਟੀਮੇਟ ਲਈ ਸੁਖਮਨ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 416-816-8401 416-816-8484-8408-8401-8484-8484-8484-8484-8484-8484-8484-8484-8484-8484-8484-8484-8484-8484-8484-8484-8484-8484-8484-8484-8484-8484-8484-8484-8484-8484-8484-8484-8484-8484-8484-8484-8484-8484-8484-8484-8484-8484-8484-8484-8484-8484-8484-8484-8484-8484-8484-8484-8484-8484-8484-8484-8484-8484-8484-8484-8484-8484-8484-8484-8484-8484-8484-8484-8484-8484-8484-8484-8484-8484-8484-8484-8484-8484-8484-8484-8484-8484-8484-8484-8484-8484-8484-8484-8484-8484-8484-8484-8484-8484-8484-8484-8484-8484-8484-8484-8484-8484-8484-8484-8484-8484-8484-8484-8484-8484-8484-8484-8484-8484-8484-8484-8484-8484-8484-8484-8484-8484-8484-8484-8484-8
0: हैं, लेकिन आप, मैं हमेशा कहता हूं कि अगर आपको गाड़ी कोई भी लेनी है, कौन सी ब्रांड की लेनी है, एक बार उससे पहले मिल्टन फोर्ड जरूर पहुंचे, उनको एक बार विजिट कीजिए। आप विजिट करोगे, इनके पास मिल्टन फोर्ड और लिंकन की गाड़ियां हैं, और सबसे बढ़िया चीज मतलब इतने अच्छे इनके पास डील्स है, इतने अच्छे इनके पास ऑफर्स है। आप कभी मतलब वहां पे जाके, मुझे 100% गारंटी है कि वहीं से आप लोगे। क्यों? बिकॉज ये यहाँ पे जो इनके अनिल चोपड़ा जी है, इनको 40 साल का टोटल तजुर्बा है ये फील्ड में, तो वो आपको बहुत जैसे आपकी जरूरत है वो हिसाब से इनकी टीम आपको प्रॉपरली गाड़ी चूज करके देगी, बढ़िया से बढ़िया डील मिलेगी। मस्टैंग लेनी है, फोर्ड का पिकअप ट्रक लेना है, लैरियट लेना है, जो भी लेना है आप जाइए वहां पे, आपको बहुत ही बढ़िया डील्स मिलेंगी और बहुत ही बढ़िया लोग मिलेंगे। वहां पे आप पहुंचिए और रेडियो आवाज के लिसनर्स के लिए भी स्पेशल डिस्काउंट है। तो पहुंचना कहाँ पे है जी, 655 मेन स्ट्रीट ईस्ट मिल्टन, मिल्टन फोर्ड। इनका नंबर है जी 416-302-99-41।

पवन कौर गिल, इनका नंबर है जी 6473259100, 6473259100 पे आप डायमंड इंश्योरेंस के पवन कौर गिल को आप कॉल कर सकते हो। उसके साथ साथ में जी अभी ठंडिया आ रही है जी, डक क्लीनिंग करवाना है तो नानक डक क्लीनिंग इज द बेस्ट प्लेस टू गो। क्यों? बिकॉज काफी जेन्युइन बंदे हैं, आप जो भी आप घर का डक क्लीनिंग करवानी है उसके लिए प्रॉपरली ये आपको पहले गाइडेंस देंगे, फिर आपको प्रॉपरली बताएंगे कि क्या क्या होना है। ऐसे नहीं कि जो लोग आते हैं चलो आ गए फिर नहीं चलो कुछ और ही बता दिया, आपके आपके साथ पैकेज डिसाइड हुआ पहले बोलेंगे चलो हम ये पैसे लेंगे, फिर वहां पे बोलेंगे नहीं नहीं ये चीजें खराब है वो खराब है, फिर लास्ट मोमेंट पे आपका सारा प्लान चौपट हो जाएगा। तो इसके लिए नानक डक क्लीनिंग रिलायबल पीपल, और बहुत सारे जब भी आप उनको कॉल करते हो तो आपको प्रॉपरली शेड्यूल देके वो आके प्रॉपरली समझा के वीडियो इंस्पेक्शन करवाएंगे, प्रॉपरली डक क्लीनिंग करके देंगे। तो नानक डक क्लीनिंग, नंबर टू कॉल इज 416-729-1521 पे आप इनसे कॉल कर सकते हो जी, नानक डक क्लीनिंग पे। और जी शो में आगे चलो जी, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था चलो कॉल्स कीजिए, मैं प्लानिंग के लिए के रिगार्डिंग हम बात कर रहे थे, और शो में चलो अपना एक नेक्स्ट सेगमेंट जो भी अपना काफ़ी लोग वेट करते हैं सेगमेंट के लिए, मैं वो सेगमेंट आज आपके लिए स्पेशल लेके आया हूँ। चलिए जी, बाबा बक्तोरा सेगमेंट। बाबा बक्तोरा सेगमेंट में जी आपको करना क्या है जी, आपको आपकी डेट ऑफ बर्थ बतानी है आपकी, और आपका डेट ऑफ डे बताना है और मंथ ऑफ बर्थ बताना है। बस इसके साथ साथ में आप हम आपको आपके कुछ पॉजिटिव चीजें और कुछ इम्प्रूवमेंट्स वाली चीजें ये आपको बताएंगे। और मैं सबको पहले ही बता दूं कि ये कोई अपना चार्ट मतलब भविष्यवाणी तो नहीं है, लेकिन फिर भी ये आप भविष्यवाणी है नहीं, हम आपको आपकी अच्छी आदतें बताएंगे और उसके साथ साथ में आपके कुछ इम्प्रूवमेंट चीज़ें इम्प्रूवमेंट करने वाली चीज़ें हैं वो हम आपको बता सकते हैं। करना क्या है आपको, आपको हमें आपका डेट ऑफ बर्थ बताना है, दैट्स इट। इसके अकॉर्डिंगली जो भी चार्ट कहता है तो जो चार्ट के हिसाब से हम बताएंगे आपको। तो आपको कॉल कहाँ पे करनी है, 905-673-3337 पे आप हमें कॉल कीजिए, 905-673-3337 पे आप हमें कॉल कीजिए, और इस चार्ट में आपके बर्थडे के हिसाब से क्या कहता है ये चार्ट, ये हम आज हम आपको बताएंगे। जैसे चलो किसी का बर्थडे आता है जी मई में, कोई भी है, तो उसमें कैसा होता है कि वो मतलब लर्निंग के लिए ईगर है, आप इंटेलिजेंट हो, क्लेवर हो, अलर्ट हो, चीयरफुल हो, ये अच्छी बात है, लेकिन उसमें इम्प्रूवमेंट वाली चीज़ हो कि आप बहुत टेंशन ले लेते हो भाई, उसके बाद थोड़े से नर्वस हो जाते हो और बहुत ही आप दानवीर हो, तो कभी कभार ये अच्छी चीज़ होती है। तो ऐसी कुछ चीज़ें अपना चार्ट बताता है। तो नंबर टू कॉल इज 905-673-3337 पे आप हमें कॉल कीजिए और हमें आप बताइए जी आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, और हम आपके लिए कुछ अच्छी आदतें और कुछ बुरी आदतें बताएंगे। इसके साथ में जी चलिए आपके लिए एक छोटा सा अगला गाना मेरी तरफ से।

0: चलिए जी, सुबह सुबह तो इतना बढ़िया गाना है जी, कितना अच्छा, मतलब सूफी सॉन्ग है ये भी, थोड़ा सा बहुत ही सूफी सॉन्ग है, इट इज़ मोर ऑफ स्पिरिचुअल सॉन्ग है। जिनको स्पिरिचुअल सॉन्ग पसंद है उनके लिए बढ़िया है जी, जिनको नहीं है उनके लिए थोड़ी देर टाइम बाद मैं कुछ अलग ही लगाऊंगा। चलो जी, सुनते रहिए जी आपका शो रेडियो आवाज़ 5:30 AM पे। स्टूडियो की घड़ी में बज चुके हैं जी 9:34, और अपने सेगमेंट में जी बाबा बक्तोरा सेगमेंट। बाबा बक्तोरा सेगमेंट अपनी अच्छी आदतें और आपकी बुरी आदतें बताते हैं, तो जल्दी जल्दी कॉल कीजिए 905-673-3337 9056733337 पे। चलिए जी, समोसा एंड स्वीट फैक्ट्री। चलो जी, आपको कोई भी प्रॉपर मतलब स्वीट्स खानी है, ऐसा नहीं है कि जो इंडिया से फ्रोजन होके 2 महीने चल के बाद में आने वाली जो भी मिठाई है वो सब सब तरफ बिकती है, लेकिन वो आपको मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। अगर आपको ताजी बनी हुई फैक्ट्री में बनी हुई मतलब अगर मिठाइयाँ खानी है तो समोसा एंड स्वीट फैक्ट्री इज़ द राइट प्लेस टू गो। इनका नंबर है जी 416-213-1155, 416-213-1165, 416-213-1155 या पैंट इज द राइट वर्ड, सॉरी जी 416-213-1165 पे आप इन्हें कॉल कर सकते हो जी फॉर समोसा एंड स्वीट फैक्ट्री। उसके साथ साथ जी फाइनेंशियल एडवाइजर है जी जसविंदर ढिल्लो। इनका नंबर इस कोई भी एक तरह प्रकार की इन्वेस्टमेंट अगर आपको करनी है तो आप इन्हें कॉल कर सकते हो 416-278-6869 पे। जसविंदर ढिल्लो जी को आप कॉल कर सकते हो फाइनेंशियल एडवाइजर की तरफ से। चलिए जी, अभी जो रनवे नंबर 2 है वो काफ़ी सारा बिजी हो चुका है, फिर से डेयरी रोड फिर से बिजी हो चुका है। मुझे लगता है सारे जो अपने लिसनर्स हैं अभी भी लॉन्ग वीकेंड का जो भी एंजॉय कर रहे हैं और काफ़ी सारे रेस्ट कर रहे हैं। तो चलिए जी, मैं आपसे सुनना चाहूँगा जी बाबा बक्तोरा सेगमेंट और एक गुड मॉर्निंग तो बनती है यार। चलो 9056733337 पे कॉल कीजिए जी बाबा बक्तोरा, डेट ऑफ बर्थ बताइए, आपकी अच्छी आदतें और बुरी आदतें सुनते रहिए। और इसके साथ साथ में जी नज़ारा एक रेस्टोरेंट का मैं आपको मैसेज देना चाहूँगा। ये लोकेटेड है जी 30 रेमलर ड्राइव पे, यूनिट नंबर 1 ब्रैम्पटन। आपको कोई प्रकार मतलब अभी चलो ठंडी आ रही है, आपको कोई इवेंट करना है तो आप ठंडी में आपके बाहर पैटियो में टेंट लगाओगे, वहाँ पे कोई हीटर्स लगाओगे, फिर सारी अरेंजमेंट्स करवाओगे, लेकिन इट इज़ मोर ऑफ कंबरसम, मतलब काफ़ी सारा मतलब हैसल्स है इसमें। तो इससे अच्छा मैं आपको एक जगह रिकमेंड करूंगा, इट्स नज़ारा, 30 रेमलर ड्राइव पे है। और आप वहाँ पे वन स्टॉप सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी, इतना बढ़िया एम्बियंस मिलेगा, बढ़िया सी स्टेज बनी हुई है, उसके साथ साथ में डीजे लाइट्स है और म्यूजिक सिस्टम है, पूरा डेकोरेट किया हुआ प्रॉपर सारा आपको मतलब एक जगह पे सारी चीज़ें मिल जाएगी। कोई सेपरेट आपको लाइट वाले को बुलाने की ज़रूरत नहीं है, कोई स्टेज वाले को बुलाने की ज़रूरत नहीं है, कोई म्यूज़िक सिस्टम वाले को बुलाने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी चीज़ को आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको सिर्फ आपकी फैमिली आपके गेस्ट को लेके वहाँ पे पहुँचना है और वहाँ की टीम आपके लिए सारा कुछ प्रॉपरली सब अरेंज करेंगी। आपको प्रॉपर मतलब इतना बढ़िया फूड मिलेगा, आपका जो भी इवेंट है आप 100% एंजॉय करोगे। तो ठंडी आ गई है तो अगर आपको पार्टी करनी है, बर्थडे पार्टी करनी है, कोई इवेंट करनी है, शादी करनी है, एंगेजमेंट करनी है, जो भी करना है, नज़ारा रेस्टोरेंट इज वन ऑफ द परफेक्ट प्लेस फॉर यू एंड द बेस्ट प्लेस फॉर यू इन टर्म्स ऑफ फूड, बिकॉज वहाँ के जो शेफ है, शेफ वो दे आर द 3rd जनरेशन शेफ है, कॉरपोरेट शेफ है, उन्होंने काफ़ी सारे अच्छी अच्छी जगहों पे कंट्रीज में, इंडोनेशिया में काम किया है, उन्होंने यूरोप में भी काम किया हुआ है और इधर कनाडा में भी काफ़ी टाइम से वो काम कर रहे हैं। तो वहाँ का आपको प्रॉपरली आपका एकदम इंटरनेशनल लेवल का जो टेस्ट आपको मिलेगा, एम्बियंस मिलेगा। तो पहुंचना कहाँ पे, 30 रेमलर ड्राइव पे, यूनिट नंबर 1E ब्रैम्पटन पे। और इनकी सबसे बढ़िया वीक डे स्पेशल एक डील चल रही है, आप 30 पीपल अगर 30 बंदों की गैदरिंग है आपकी, उनके लिए आपको पार्टी ऑर्गेनाइज करनी है तो नज़ारा रेस्टोरेंट इज वन ऑफ द बेस्ट। और दे आर गिविंग एक पैकेज पूरा बना के आपको, उसके में अनलिमिटेड फूड, अनलिमिटेड सॉफ्ट ड्रिंक्स और आपको पूरी ये सारी जो फैसिलिटीज मैंने बताई, स्टेजेस, डेकोरेशन, लाइट्स, सारी आपको मिलेगी जी बिल्कुल उस पैकेज के अंदर। और पैकेज है ओनली फॉर $1,000 ओनली, $1,000 में 30 लोगों का प्रोग्राम आप सक्सेसफुली कर सकते हो विद अ वेरी गुड एम्बियंस, बहुत ही बढ़िया टेस्ट और वेरी परफेक्ट प्लेस फॉर यू, और विंटर की चिंता करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है बहुत, और पार्किंग की चिंता करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। इतने बहुत ही ज़्यादा पार्किंग वहाँ पे प्लाजे में अवेलेबल है, तो कोई आपके कितने भी गेस्ट हो आप वहाँ पे आराम से जा सकते हो और गाड़ियाँ परफेक्टली पार्क भी कर सकते हो। एक बार अगर आपको पार्टी करनी है, एक बार डिसीजन लेने, आप एक बार पहुँचिए वहाँ पे, देखिए इनके एम्बियंस, और ये आपका इवेंट बहुत ही बढ़िया कर सकते हो। अगर आपको इनकी इवेंट्स जो किए हैं वो देखने भी है, तो आप इनके इंस्टाग्राम पेज पे भी जा सकते हो, नज़ारा की इंस्टाग्राम पेज पे जाइए। उन्होंने उनके जो एम्बियंस है, जो पार्टीज करिए, उनके बहुत सारे इन्फॉर्मेशन शेयर किए हुए हैं, तो वो आप देखिए और वहाँ पे पहुँचिए। तो नज़ारा रेस्टोरेंट इज लोकेटेड 30 रेमलर ड्राइव पे, यूनिट नंबर 1 ब्रैम्पटन में लोकेटेड है। स्टील्स एंड कैनेडी का इंटरसेक्शन है। स्टील्स एंड कैनेडी पे जैसे ही आप क्वीन की तरफ जाते हो तो वहां पे आपको हस्की का स्टेशन मिलेगा, तो उसके बिल्कुल सामने आपको मिलेगा नज़ारा रेस्टोरेंट। तो वहां पहुंचिए और अपनी पार्टियां जल्दी से बुक कीजिए। और इन्होंने आई थिंक शॉर्ट टाइम में बहुत ही ज़्यादा, आई थिंक 50 to 60 पार्टियाँ होस्ट की है, सक्सेसफुली होस्ट की है। मैंने भी 2-3 बार जाके वहां पे लाइव ऑन लोकेशन किया था, तो मैंने देखा है इनका बहुत ही अच्छा पैटियो है, बहुत ही बढ़िया डिज़ाइन किया हुआ है, तो उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो नज़ारा रेस्टोरेंट, नंबर टू कॉल इज 905-451-2600, 905-441-2600। तो आप इनको कॉल कर सकते हो जी, नज़ारा रेस्टोरेंट। उसके साथ साथ में पीछे ही इनका एक पिज़्ज़ा शेफ है, वहाँ पे आपको पिज़्ज़ा मिलेगा जी 899 में, आपको मीडियम साइज पिज़्ज़ा मिलेगा विथ 3 टॉपिंग्स, और लार्ज पिज़्ज़ा इज 999 विथ 2 टॉपिंग्स। और इसके साथ बहुत सारी और डील्स भी वहाँ पे लगी हुई है। तो पहुँचिए जी नज़ारा रेस्टोरेंट ऑन 30 रेमलर ड्राइव, और नज़ारा के सेम प्लाजे में आपको ये भी मिलेगा जी, पिज़्ज़ा शेफ और तवा किचन, ये भी वहीं पे लोकेटेड है जी। तो पहुंचिए जल्दी, अपना इवेंट प्लान कीजिए, और इनके साथ बहुत ही अट्रैक्टिव रेट्स और विंटर से बचने के लिए इट्स वन ऑफ द बेस्ट प्लेस, वहां पे जाइए और अपनी पार्टियां एंजॉय कीजिए। साथ साथ में जी RSG कस्टम सोफा एंड अपहोल्स्ट्री, ये लोकेटेड है जी 20 मेलनी ड्राइव यूनिट नंबर 10 पे। कस्टम सोफा बनवाना है, आपके पुराने सोफे हैं, आपके मतलब मेमोरीज जुड़ी होती है सबके साथ में, तो अगर आपको वो छोड़नी नहीं है तो RSD कस्टम सोफा पे आप पहुंचिए, और आपके सोफे वो आपको प्रॉपर तरीके से बहुत ही, जो भी आप क्वालिटी फैब्रिक्स चाहिए, जैसे भी चाहिए, डिज़ाइन सेम रखना है, चेंज करना है, सारी चीज़ आपको करके देंगे जी RSD कस्टम सोफा पे। तो पहुंचना कहां पे, 20 मेलनी ड्राइव यूनिट नंबर 10 ब्रैम्पटन, नंबर टू कॉल इज 647-705-1317, 647-705-1317 पे आप कॉल कर सकते हो। इसके साथ साथ में जी मास्टर योर एग्जाम, आपको रियल एस्टेट का एग्जाम करना है, अगर आपको मॉर्गेज का कोई कोर्स करवाना है, इंश्योरेंस का करवाना है, या फिर डिजाइनिंग का करवाना है, तो मास्टर योर क्लास इज द बेस्ट प्लेस टू डू। आप इन, ये आपका जो भी शेड्यूल है उसके साथ आपको, मगर आप फॉर एग्जाम्पल आपका शेड्यूल है मॉर्निंग में आप काम को जाते हो तो आपको टाइम नहीं है, तो इवनिंग में आपका टाइम अवेलेबल है, तो वो आपको वैसे कस्टमाइज करके आपके क्लासेस करवा के देंगे। तो आप इन्हें कॉल कर सकते हो, नंबर टू कॉल इज 672-667-6756, सैमी को कॉल कर सकते हो आप 672-667-6756 को आप उन्हें कॉल कर सकते हो। मॉर्गेज एजेंट का कोई एग्जाम है, ओमविक ऑटो सेल्स की करनी है, रियल इस्टेट सेल्स का आपको कोई कोर्स करना है, ब्रोकर क्वालिफाइंग का करवाना है, LLQP लाइफ इंश्योरेंस का करवाना है, रिबो ऑटो और होम इंश्योरेंस वाला आपको कोर्स करना है, और बहुत सारे इनके पास कोर्सेस है, ये आपको प्रॉपर तरीके से गाइड करेंगे। और अगर आपको मतलब गाइडेंस भी चाहिए, फॉर एग्जांपल चलो आपको लगता है कि मुझे कौन से कोर्स में जाना है, यू आर नॉट एबल टू डिसाइड, तो आप मास्टर योर एग्जाम को कॉल कीजिए, ये आपको गाइड भी कर सकते हो कि आपके लिए फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव कौन सा कोर्स अच्छा रहेगा, सो दैट यू कैन अर्न मोर। तो जी कॉल कीजिए मास्टर योर एग्जाम, नंबर टू कॉल 672-667-6756 पे। और एक नंबर इनका है जी 437-376-5656 पे आप इन्हें कॉल कर सकते हो मास्टर योर एग्जाम, 437-376-5656 पे आप इन्हें कॉल कर सकते हो जी। चलिए उसके साथ जी डोर्स एंड विंडोज, आपको अगर विंडोज चेंज करवानी है तो वी रिकमेंड राइट विंडो फोर्स। बहुत ही बढ़िया इनकी विंडोज़ होती है जी, बहुत ही क्वालिटी विंडोज़ होती है, मेड इन कनाडा विंडोज़। अगर आपको चाहिए, इनका एक स्लोगन है, चोर का गोडा टूट जाएगा लेकिन विंडोज़ नहीं टूटेंगी। तो इतनी बढ़िया विंडोज़ है जी, फ्रॉम राइट विंडो फोर्स, कस्टम मेड विंडोज़। अभी विंटर आ चुका है, आपको धीरे धीरे आपको पता चल गया होगा कि कौन सी विंडो में आपका मॉइस्चर रिटेन हो रहा है, कौन सी विंडो से आपकी ठंडी हवा ज़्यादा आ रही है। जहाँ अगर ठंड लग रही है तो करना क्या है, आप जल्दी से कॉल कीजिए जी राइट विंडो फोर्स को। इनका नंबर है जी 416-206-3200, 416-206-3200 पे आप कॉल कर सकते हो जी राइट विंडो फोर्स। इनके पास काफ़ी सारी बढ़िया तरह की विंडोज है और बहुत ही यूनिक तरीके के इनके पास लॉकिंग वाले यूनिक डोर लॉक्स हैं। तो इनका आप जैसे आपको चाहिए, जो मतलब अगर वो ज़्यादा सिक्योरिटी वाले चाहिए तो इनके पास वो भी अवेलेबल है। तो कॉल कीजिए जी राइट विंडो फोर्स, इनका नंबर है जी 416-206-3200, 416-206-3200 पे आप इन्हें कॉल कर सकते हो जी। और बहुत ही इनोवेटिव जी हैरी फोटो बूथ, हैरी फोटो बूथ को भी आपको अगर फोटो सर्विसेज इनकी जो सर्विसेज, इनके पास फोटो बूथ है, जो फोटो बूथ है आप वहां पे फोटो निकाल के फ्रिज मैग्नेट वगैरह बना सकते हो, कीचेन बना सकते हो। और इनके पास और फैसिलिटी है जी 360 डिग्री वीडियो बूथ, एक उनके पास है, अगर आपको कोई इवेंट है वहां पे आपको ये लगवाना है तो वहां पे भी ये लगा सकते हैं, फोटो बूथ रखना है, 360 वीडियो बूथ रखना है। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज, अगर आपके पास पार्टी है और बच्चे हैं, आपको कोई मैस्कॉट चाहिए तो आपको ये भी प्रोवाइड करते हैं। जैसे वो एक बंदा आता है कि मतलब क्या कहते हैं, डोनाल्ड डक का ड्रेस पहन के आया, हाँ जी डोनाल्ड डक का, मैंने डोनाल्ड ट्रंप नहीं सॉरी चलिए जी डोनाल्ड ट्रंप का डक का सूट पहन के आएगा, डांस करेगा, गुरिल्ला का आएगा, अलग अलग इनके पास मैस्कॉट से वो आपको मिलेंगे। और इनके पास वीडियो गेस्ट बुक है, जैसे मैंने काफ़ी मॉल्स में भी आपने देखा होगा कि जैसे फ़ोन उठा के आप बात करते हो, एक उसकी फिर भी एक मेमोरी बन जाती है। और काफ़ी सारे इनके पास ऑप्शंस है, कैनेडी और कैंडी आइसक्रीम कार्ड्स भी मिलेंगे। तो हैरी फोटो बूथ, इनको आप कॉल कर सकते हो, आपका कोई भी इवेंट है अगर फॉर एग्जांपल आप नज़ारा पे जाके करना चाहते हो तो वहां पे भी आपको मिलेंगे जी हैरी फोटो बूथ। तो उनको बुलाइए, फोटो बूथ के का जो भी ऑप्शंस आपको सही लगते हैं, फोटो बूथ रखना है, 360 डिग्री फोटो बूथ रखना है, डांसिंग मैस्कॉट चाहिए, पार्टी को एंजॉय करना है, तो हैरी फोटो बूथ को ना भूलिए। इनका नंबर है 4379882315, 4379882315 पे कॉल कर सकता हूँ। और आज मैं और एक चीज़ मेरे थोड़ी दिमाग में थी, मैं कब से सोच रहा था मैं आपसे शेयर करूँ, तो चीज़ ये है कि चलो लॉन्ग वीकेंड के रिलेटेड ही है, लॉन्ग वीकेंड है, अगर आप कहीं बाहर घूमने जा रहे हो, कहीं प्रोग्राम अटेंड करने जा रहे हो या फिर कहीं शादी अटेंड करने जा रहे हो तो देन इट्स फाइन, आपका दिन सही चल जाता है। बट लेकिन अगर आप कहीं नहीं जा रहे हो, घर में एंजॉय कर रहे हो, फैमिली के साथ बैठे हो, और आप चलो आप फैमिली के साथ बैठे हो, थोड़े टाइम में आप कहीं बिजी हो जाते हो काम करने में, तो बच्चे अपने फ़ोन पे लग जाते हैं, तो आप वो टाइम पास कैसे करें, उनके पास काम मतलब अभी बोलेंगे चलो होमवर्क दो दिन थे मैंने कर लिए, लॉन्ग वीकेंड कोई होमवर्क था नहीं, डैडी मुझे रेस्ट करना है, एंजॉय करना है, लेकिन बच्चे फोटो फ़ोन लेके अपना गेम खेलते रहते, चलो एक सर्टेन लिमिट के टाइम तक खेल रहे दैट इज़ फाइन, बट उसके बाद भी खेलते रहते तो उनका जो वक्त है वो सारा गेम में लग जाता है। एक मैं बात कर रहा हूँ फ्रॉम क्रिएटिविटी पर्सपेक्टिव की क्रिएटिविटी, क्योंकि बच्चे बहुत क्रिएटिव होते हैं, ना ही बच्चे बट मैं अगर कहूँगा कि जो भी बड़े हैं उनके लिए भी, कि हम टाइम बैठने के लिए, आपको पता है आजकल सोशल मीडिया है, वहां पे कुछ अच्छी चीज है बट उसका एक ड्रॉबैक भी है कि एक बार आप वहां पे बैठ गए तो 2-3 घंटे उस पर स्क्रोल करते रहो, आपको टाइम कैसे जाता है पता नहीं होता, फिर लगता है अरे यार मैं फोन पे बैठ गया, 2 घंटे हो गए, 3 घंटे मेरा ये काम रह गया। तो इसके क्या होता है कि क्रिएटिविटी बंद हो जाती है। जैसे मैं एक छोटा सा मतलब एक शेयर करना चाहता हूं कि जो मेरा ओपिनियन है कि नॉर्मली हम बैठते घर पे, चलो रेस्ट करना है, बैठ के फ़ोन देखते, टीवी देखते, चलो उसमें से थोड़ा टाइम निकाल के कुछ चीज़ें करवाइए। जैसे मतलब अगर आपके बच्चे हैं वो कुछ कर रहे हैं, अगर उनको थोड़ा कुछ सिखा सकते हो, या फिर उनको अगर कुछ ड्राइंग करते हैं या फिर कोई म्यूज़िक उनका इंटरेस्ट है, कोई एक छोटा सा आपके पास इंस्ट्रूमेंट है उन पे अगर वो प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो वो चीज़ों में थोड़ा सा उनको एनकरेज कर सकते हो आप कि चलो कुछ करना है ड्राइंग में, आपने कुछ एग्जांपल ले लिख लिया, चलो बेटा चल ये करके देख लो, या फिर आपने खुद भी ट्राई किया, चलो ये कुछ मतलब ठीक करने में या फिर छोटी मोटी घर की चीज़ें हेल्प करवाने में वो आपकी मदद कर लेगा, तो उसका ब्रेन रिफ्रेश हो जाते हैं बच्चों के आजकल। नहीं तो क्या है कि नॉर्मली बैठे बैठे बच्चों स्क्रीन में के सामने, टीवी के सामने, आजकल जो क्या कहते हैं जो शॉर्ट्स होते हैं यूट्यूब शॉर्ट्स, उसमें बहुत सारी मतलब सीखने वाली चीज़ कुछ नहीं है, जस्ट इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम। यस इट इज़ वेस्ट ऑफ टाइम। तो इसीलिए आप ये कर सकते हो कि आपके जो भी बच्चे हैं उनके साथ थोड़ा सा टाइम वेस्ट कीजिए, उनको एक थोड़ा सा कुछ नए नए टास्क दीजिए, उनके साथ बैठिए, उनको कुछ सिखाइए, क्योंकि ताकि वो देखे कुछ मतलब क्रिएटिविटी करे। जैसे पेंटिंग अगर वो अच्छा करता है तो आपको पता चल जाएगा, चलो ये उसको पेंटिंग में इंटरेस्ट है, वो क्या दिमाग एक फिर एक्टिव हो जाता है, बिकॉज फोन में देख देख के बच्चों के जो दिमाग है वो थोड़े से फिर ज़्यादा क्रिएटिव या फिर जो सोच होती है वो बंद हो जाती है, बिकॉज काफ़ी सारे बच्चों में मैंने देखा है एज अ प्रोग्रेस जैसे जैसे आगे बढ़ता है वो मैंने देखा है कि चलो बच्चा पहले एक्टिव था बट नाउ सेडेंटरी लाइफस्टाइल आ गई है, क्योंकि अभी विंटर भी आएगा तो स्नो है, बाहर खेलने जा नहीं सकते, तो घर बैठ के फिर बच्चे वो ज़्यादा ज़्यादा फ़ोन देखेंगे। स्कूल है चलो ऑफकोर्स स्कूल इज़ देयर, बट स्कूल के आने के बाद भी बच्चे थोड़े से थक जाते, दे रेस्ट, बट वीकेंड पे आप क्या करोगे, उनको अगर कुछ क्लासेस लगा सकते हो तो दैट इज़ वन ऑफ द गुड थिंग। नहीं करवा सकते हो तो घर पे बैठ के ही आप उनके साथ थोड़ा सा इन्वॉल्व हो जाइए, थोड़ा कुछ उनके साथ खेल भी सकते हो या फिर क्रिएटिविटी कर सकते हो, कुछ लिखवा सकते हो, कुछ रीडिंग का दे टास्क दे सकते हो कि ताकि उनका एक नॉलेज बढ़ सके। और क्योंकि एज एक होती है लर्निंग की, एक सर्टेन लिमिट के बाद लर्निंग कम हो जाती है, मैं ऐसा नहीं कहता हूं कि लर्निंग बंद हो जाती है, लेकिन लर्निंग कम हो जाती है। लर्निंग एक बार कम हो गई तो फिर आपके फिर से वो चीज़ में इंटरेस्ट बनना बहुत मुश्किल होता है। तो इनिशियली ही जब आपके बच्चे या फिर आप भी, अगर आपको लर्निंग की हैबिट है पहले से या आदत है आपको, तो दैट इज़ गुड, तो आप फिर एक सीखते रहते हो। अगर बच्चों को पहले से ही वैसी एक आदत लगा देते हो कि चलो आपको कुछ ना कुछ नया सीखना है, तो दैट इज़ ऑलवेज गुड फॉर यू और आपको बच्चों के लिए भी। तो इसीलिए आपके बच्चों को कुछ नया सिखाइए और उनको फ़ोन से दूर हटा के कुछ क्रिएटिविटी देखिए। बिकॉज हाल ही में मैंने एक छोटा सा एक मैं किसी कई लाइव ऑन लोकेशन पे गया था और कुछ वहाँ पे एक बच्चा बैठा था, तो वो बैठे बैठे अभी घर से बाहर आए तो उन्होंने पहले फ़ोन दिया था, तो कुछ वो बातें कर रहे थे, तो फिर उन्होंने फ़ोन पे हटा दिया और उसको छोटा सा एक पेन और वहाँ पे कोई था ऑफिस में से, तो उन्होंने एक छोटा सा पेपर और पेन पकड़ा दिया उसको, तो वो बच्चे ने इतनी अच्छी आर्ट या फिर ड्राइंग कर लो वो बनाई, तो इट इज़ लाइक वो बच्चे की एज से आई थिंक चार साल के बच्चे के हिसाब से वट वॉज क्वाइट मैच्योर्ड। तो ऐसी चीज़ें काफ़ी उभर के आती है। सो ये मुझे या फिर कहने का टोटल मेरा मकसद ये है कि जो भी आजकल की सिनेरियो है आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते बट उसको बेटर कर सकते हो। कैसे? एक छोटी छोटी चीज़ें सोच के, बस एक छोटा सा सोचना है, एक छोटी सी क्रिएटिविटी लानी है दिमाग में। चलो कहते हैं कि चलो एक क्या कहते हैं वन स्टेप एट अ टाइम अगर आप लेते हो तो इट इज़ ऑलवेज गुड एंड ऑलवेज बेनिफिशियल फॉर एवरीवन। तो इसलिए छोटी छोटी स्टेप्स लीजिए। बच्चे को पहले फ़ोन दे रहे हो आप, फ़ोन से हटाइए, उसको बोलो चल तू बेटा ये तू कर ले, या फिर हम खुद है मैं करता हूँ, चलो आज फ़ोन में 10 मिनट ही देखूंगा, उसके बाद मैं कुछ और चीज़ें करूँगा। तो ऐसे ऐसे आपका भी दिमाग फ्रेश हो जाता है। कहीं बाहर बोलते चलो बाहर ठंड है, घूमना ठंडी में घूमना अच्छा नहीं लगता, बट एक बार आप स्टेप आउट बाहर जाते हो, 2 मिनट आप कहते हो चलो मैं 2 मिनट ही वॉक करके आ जाओ, 2 मिनट के आपके 15 मिनट कैसे हो जाएंगे आपको पता नहीं चलेगा। तो ऐसी एक कंफर्ट जोन होता है हर किसी का, मेरा भी कंफर्ट जोन है, आपका भी होगा, हर किसी का होगा। वो कंफर्ट जोन से थोड़ा बाहर आना जरूरी है। तो आप जैसे ही बाहर आओगे कंफर्ट जोन से तो आपको दुनिया खूबसूरत लगनी शुरू हो जाएगी। और चेंज इज बहुत डिफिकल्ट होता है कि अगर आप फॉर एग्जांपल बैठे हो मस्त, आप घर पे बैठे हो, वार्म एनवायरनमेंट है, आप बाहर जाना चाहते हो, ठंड लगेगी मैं कैसे जाऊं, तो पहले आपका दिमाग आपको रोकता है, चलो बहुत ठंड लगेगी, आपको दिखेगा नहीं ठंडी होगी, मुझे फ्रीज होगा, फिर मैं कैसे जाऊं, बहुत ज़्यादा ठंड लगेगी, ये आपका दिमाग कहता है। बट आपको छोटा सा बोलना चल रहे हैं कुछ नहीं, 2 मिनट बाहर जाके आएंगे, कुछ नहीं होता। तो दैट्स हाउ आपके ब्रेन को भी आप ट्रेन कर सकते हो. एक बार फिर आप क्या कहते हो कि आप एक्टिव बन जाते हो, एक्टिव बन जाते हो. और जैसे अभी ये क्या कहते हैं, मौसम बदलेगा, इनएक्टिवनेस ज़्यादा बढ़ जाता है. तो इसीलिए एक दरख्वास्त है, जैसे ही मौसम बदलता है, ठंडी आती है, आपको एक्टिव रखिए. एक्टिव रखना है कि जस्ट भाई जो भी चीज़ करनी है उसको स्टार्ट कीजिए, स्टार्ट कीजिए. वंस यू स्टार्ट, आप यू आर रेडी टू गो अहेड और कंटिन्यू कर सकते हो. स्पेशली आजकल मैं एक दरख्वास्त करूंगा जो भी बच्चे हैं उनके लिए, उनको आप एक छोटी छोटी चीजें घर में करवाइए, नहीं तो बिकॉज पूरे विंटर वो घर पे बैठ के वीकेंड्स पे सिर्फ फोन ही देखेंगे, बाकी कुछ नहीं देखेंगे. तो ये छोटी सी मेरी आज गुजारिश है. जो भी लिसनर्स आज मेरे मुझे सुन रहे हैं, रेडियो आवाज सुन रहे हैं, अगर उनमें से भी मैं सोचता हूँ कि एटलीस्ट 1% लोग भी अगर इसको इम्प्लीमेंट कर सके तो दैट इज वेल एंड गुड फॉर मी. मैं सोचूंगा कि मेरा आज का दिन, मेरा आज का जो भी ये मैसेज है, ये सक्सेसफुल हो जाएगा जस्ट फॉर अ बेटरमेंट ऑफ समवन एट सम प्लेस. कहीं पे भी आप सुन रहे हो रेडियो आवाज का जो भी रीच है, वहां से कोई भी 1% भी लोगों ने अगर इम्प्लीमेंट किया तो मेरा, मैं बोलूंगा कि मेरा दिन आज सफल हो गया. सो ये एक छोटी सी जो सोच थी, इन्फॉर्मेशन थी, आई थॉट मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ. चलिए जी, इसके साथ साथ में छोटे से मैसेज दे देते हैं जी. हाईलैंड ऑटो रिपेयर सेंटर 38 ऑटोमेटिक रोड पे ये लोकेटेड है, MTO अप्रूव्ड है. इनके पास जी यारा के यार है गैरी गरेवाल पाजी. तो गैरी गरेवाल पाजी के पास आप पहुंचिए और जो प्रोफेशनल और इनकी जो कारीगरी आप देखे आप खुश हो जाओगे और आपकी गाड़ी हमेशा वहीं पे आप ले जाओगे रिपेयरिंग के लिए. तो हाईलैंड ऑटो रिपेयर सेंटर लोकेटेड एट 38 ऑटोमेटिक रोड ब्रैम्पटन. नंबर टू कॉल इज 905-463-6363, 905-463-6363 पे आप कॉल कीजिए फॉर रिपेयर. आपकी कोई भी गाड़ी है, सेफ्टी करवानी है, ऊबर स्किप की सेफ्टी भी करते हैं और सेफ्टी करने से पहले आपको बता देंगे भैया ये चीजें हैं, ये आप करो, फिर ही सेफ्टी पास हो जाएगी, नहीं तो गाड़ी सेफ्टी नहीं होगी. दे विल टेल यू क्लियरली, कुछ भी हिडन नहीं रखेंगे. तो गैरी गरेवाल 38 ऑटोमेटिक रोड ब्रैम्पटन. इसके साथ में जी पंजाब टैक्स सॉल्यूशन के आप जगजीत साचा जी को बात की, आप कॉल कर सकते हो. आपकी कोई भी टैक्स रिलेटेड कमर्शियल है, आपकी पर्सनल टैक्स है या फिर कमर्शियल टैक्स है, दोनों पूरे प्रॉपर तरीके से ये आपको करके देंगे. नंबर टू कॉल इज 416-720-3640 पे पंजाब टैक्स सॉल्यूशंस को आप कॉल कर सकते हो. ये लोकेटेड है जी कैम्ब्रिज, किचनर, वाटरलू, ब्रैंडफोर्ड, मिसिसागा, गोल्फ, लंदन में भी. तो इनके काफ़ी सारे ब्रांचेस हैं. आप कॉल करके आपके जो भी टैक्स रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए, बहुत ही प्रॉपर तरीके से ये काम करते हैं. इनके पास बहुत सारी फाइलें हैं जिनके ऊपर काम करते हैं और उनकी टीम इतनी है कि अगर आप कॉल कर सकते हो तो मिस कॉल भी हो जाती है, दे विल कॉल यू बैक फॉर श्योर. और इंडिया जाना है, अगर आपको इंडिया जाना है तो आपको बहुत ही अट्रैक्टिव रेट्स अगर चाहिए तो आप ऑल लिंक ट्रैवल से कोमल जी को कॉल कर सकते हो जी. इनका नंबर है 9052397711. बिकॉज अभी वेकेशन शुरू हो रही है, दिसंबर का टाइम है, इनके पास अभी नवंबर दिसंबर के काफ़ी अट्रैक्टिव रेट्स है. जनवरी आपको जाना है तो बहुत ही अट्रैक्टिव पैकेजेस है. इसके साथ में लगेज का ऑप्शंस है, ज़्यादा खुद मतलब वेबसाइट्स पे जाके बुक करके फिर आप बहुत सारे सरप्राइजेस आपको बाद में मिलते हैं, तो वो अवॉइड करने के लिए आप बेटर है पहुंचे कोमल ऑल लिंक ट्रैवल, उनको सारी हेडेक दे दीजिए, आपको जैसे चाहिए वैसे वो बना के देंगे, प्रॉपरली सारी चीज़ें आपको प्लान करके देंगे. और ऑल स्टेट इंश्योरेंस की दीक्षा को ले रही है जी 6476562810 पे आप कॉल कर सकते हो जी. ऑल स्टेट इंश्योरेंस होम और ऑटो इंश्योरेंस के लिए दीक्षा गुलेरिया फ्रॉम ऑल स्टेट इंश्योरेंस. इसके साथ में जी रियलिटी पेंटिंग, अगर आपको घर पेंट करवाना है, कोई भी कस्टम रिनोवेशंस करवानी है, कोई भी छोटी मोटी रिनोवेशंस करवानी है तो रियल्टी ग्रुप के सुखमन जी को कॉल कर सकते हो. उन्होंने बहुत ही बड़ी बड़ी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स वहाँ पे काम किया है तो बहुत ही एक्सपीरियंस्ड लोग है ये. प्रॉपर तरीके के इंश्योरेंस है, प्रॉपर तरीके के आपको गाइडेंस देंगे, रिनोवेशन करके देंगे. और स्पेशली जो भी आप पेंट की काम करते हो तो 7 साल की वारंटी गारंटी देते हैं पेंट के ऊपर फ्रॉम रियलिटी ग्रुप. तो इनको कॉल कीजिए जी 416-816-8401 पे. रियलिटी ग्रुप के सुखमन जी को कॉल कर सकते हैं 416-816-8401. आप रियलिटी पेंटिंग को कॉल कर सकते हो जी रियलिटी ग्रुप के लिए. उसके साथ साथ में स्पेशली अगर हमें कोई वेयर हाउस मैनेजर सुन रहा है, ऑपरेशन मैनेजर सुन रहा है, शिपिंग डिपार्टमेंट वाले सुन रहे हैं या फिर परचेस टीम सुन रही है, आपको पैलेट्स चाहिए, कस्टमाइज्ड पैलेट्स, एक्सपोर्ट क्वालिटी पैलेट्स, ISPM 15 सर्टिफाइड पैलेट्स अगर आपको चाहिए तो इट्स MK पैलेट्स इज द बेस्ट प्लेस टू विजिट। इनके पास कस्टम पैलेट्स आप जैसे आपको चाहिए वैसे बना के देंगे, एक्सपोर्ट के लिए आपको चाहिए तो वो हिसाब से आपको बना के देंगे, और आपकी शिपमेंट के लिए परफेक्ट जो भी जैसे आपको चाहिए वैसे आपको मिल जाएगा। इनका नंबर टू कॉल 3658662080, 3658662080 पे आप कॉल कर सकते हो। गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया तो टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, तो आप स्पीडेक्स को कॉल कर सकते हो, स्पीडेक्स ऑटो।
1: हाय, दिस इज पॉल एवनॉफ, प्रेसिडेंट एंड सीईओ ऑफ एवनॉफ कम्युनिकेशंस। Thanksgiving reminds us to be grateful for our family and friends, and for all the gifts, big and small, that life gives us. On behalf of myself, my family, and all of us at Evanoff Communications, I want to take a moment to say thank you to the dedicated people who make this radio station what it is. Thank you for your hard work, your commitment, and your passion. To our listeners, thank you for allowing us into your homes, your cars, and your lives. And to our advertisers and business partners, thank you for your trust and your continued support. This Thanksgiving, may we all find time to appreciate the people around us and the many blessings we sometimes take for granted. And if we are able, perhaps we can share our time, our kindness, or even a place at our Thanksgiving table with someone who might be in need. From my family and from everyone at Evanoff Communications, I wish you a very happy, peaceful, and heartfelt Thanksgiving.
2: This is AM 530, CHLO AM, serving Brampton, Mississauga, Toronto, the GTA, and the world at am530.ca. The opinions expressed in the following program are those of the host and their guests and do not reflect the views and opinions of the management and staff of CHLO AM 530.

0: जी हां मोटर कार का तो मालूम नहीं लेकिन आपको आपके बंगले तक पहुंचाएंगे जी यानी मॉर्गेजेस के मयंक भटनागर जी हर तरह की मॉर्गेजेस में करते हैं स्पेशलाइज वो रेजिडेंशियल हो कमर्शियल हो प्राइवेट हो फर्स्ट या सेकंड मॉर्गेजेस और या फिर आप हैं फर्स्ट टाइम होम बायर मयंक भटनागर जी 647-702-2023
1: लाइसेंस नंबर 10394
2: भाई ये ट्रक ता हुन मैं चंगी तरह चलाउन लग पया हुन सोचदा भी कोई यूज ट्रक ही ले लवां पर समझ नहीं आउंदी भी कित्थों लवां
3: ओए इहदे च सोचण वाली कड़ी गल आ ईगल ट्रक सेल्स वाले बिल सेखो नु कॉल कर ओए ओदे तो वधिया कोई नहीं
4: जी हां जे तुहानु यूज ट्रक दी लोड है ते तुहाडी पसंद दा मेक एंड मॉडल दा ट्रक तुसी एना तो ले सकदे हो अपना ट्रक वेचण लई भी याद रखो ईगल ट्रक सेल 17 Stratton Avenue, Brampton. Call Bill Seco 416-819-6000.
5: ब्रैम्पटन वासियों रीजनल काउंसलर ले वार्ड 2 अते वार्ड 6 तो प्रेमपाल गिल चौन मैदान विच हन
6: प्रेमपाल गिल दे कैंपेन ते मुख्य मुद्देयां विच पब्लिक सेफ्टी सिक्योरिटी अफोर्डेबिलिटी बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर लोकल जॉब्स अते बिजनेस ग्रोथ लोअर प्रॉपर्टी टैक्स सिटी हॉल विच ट्रांसपेरेंसी ट्रैफिक ट्रांजिट पॉसिबल स्पेंडिंग अते पावर दा मिसयूज रोकना शामिल है
5: वोटिंग डेट 26 अक्टूबर 2026 एडवांस वोटिंग दिया तरीका नोट कर लो 9 10 11 16 अते 17 अक्टूबर फॉर मोर इंफॉर्मेशन विजिट premgill.ca
6: पेड फॉर by Prempal Gill.

0: கொஞ்சம் பார்த்து ஓகேதான்
1: ஓட்டா ஹோனையே ஜதத்தி நோ வீடியோ தான் நோ ஃப்ரீசிங் நோ பஃபரிங் ஆனா 4K அல்ட்ரா ஹை குவாலிட்டி IPTV பாக்ஸ் ஹோவே ஐ நக்த பண்ணதையே
0: அது மேரே பாஸ் பில்லு கே ப்ராப்பர்ட்டி ஹே பேங்க் பேலன்ஸ் ஹே பங்களா ஹே காரி கே தமாரே பாஸ்
1: சாட்டே கோல் பாலிவுட் மூவிஸ் நே டிவி ஷோஸ் வெப் சீரிஸ் ஹிந்தி பஞ்சாபி லைவ் டிவி சேனல்ஸ் என்ஜாய் கரன் நோ வேர்ல்ட்ஸ் பெஸ்ட் தி ஹையஸ்ட் குவாலிட்டி ஆனா IPTV பாக்ஸ் ஹே தி நாலிட்டி லோ வீடியோ கோல் குர்பானி ரேடியோ பிய தி டெலிவரி பில்குல் ஃப்ரீ ஹோர் தாஸ் கே சாஹிதா
2: சல் கே ரஹா யஹான் பர்
1: ஓப்பா ஜி செலிப்ரேஷன் 40 இயர்ஸ் இன் என்டர்டெயின்மென்ட்
3: डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है
1: पर ढिलो वीडियो से जो मर्जी आ जाओ एबनीजर एंड गोर रोड 905-204-1313 जा ढिलोवीडियो.com और कोई सेवा
4: मैं बलजिंदर सिंह नहल अपने ब्रैम्पटन ने सब कुछ देखा है सड़कां तो पार्कां तक ट्रैफिक तो सिटी सेवावां तक क्राइम तो करप्शन तक चंगा शहर सिर्फ वादे नाल नहीं काम नाल बंदा है तुहाडे मुद्दे सिर्फ चोणा तक नहीं सिटी हाल तक लेके जाना मेरी जिम्मेवारी है वोट फॉर चेंज वोट फॉर बलजिंदर सिंह नहल सिटी काउंसलर कैंडिडेट वार्ड 9 & 10
5: ऑथराइज्ड एंड पेड बाय द कैंपेन ऑफिस ऑफ बलजिंदर सिंह नहल
6: घर तो आप एडा वड्डा इन्ना सोना ले लिया हुण अप्लायंसेस भी हाई एंड ही लेने हैं
7: हां ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस है ना फ्रिज स्टोव डिशवॉशर वॉशर एंड ड्रायर LED टीवी सब इत्थों ही लवांगे इन्ना तो वधिया प्राइसेस पूरे ब्रैम्पटन की टोरंटो च नहीं मिलनियां कोई भी अप्लायंसेस खरीदो पेमेंट भी 6 महीनियां च करनी है वो भी बिना किसी ब्याज दे होर ते होर डिलीवरी भी फ्री करनगे कॉल ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस 905-450-2828
8: ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਪਲਾਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪੈਸੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਸੈਲੂਲਰ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਸੇਵਿੰਗਸ ਬੈਸਟ ਫੋਨ ਪਲਾਨਸ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਤ ਤੋਂ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਪਲਾਨਸ ਚ ਸੇਵਿੰਗ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨੋ ਕੰਟਰੈਕਟ ਆਪਸ਼ਨ ਜਾਂ ਲੇਟੈਸਟ ਫੋਨ ਚਾਹੀਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਕਵਰੇਜ ਨਾਲ ਸੈਲੂਲਰ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲੇਗਾ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ ਸੈਲੂਲਰ ਪੁਆਇੰਟ ਸੇਵ ਟੂਡੇ ਇਟਸ ਦੈਟ ਈਜ਼ੀ ਆਪਣੀ ਨੀਅਰੈਸਟ ਲੋਕੇਸ਼ਨ cellularpoint.ca ਤੇ ਵੇਖੋ ਸੈਲੂਲਰ ਪੁਆਇੰਟ ਮੋਰ ਫੋਨਸ ਮੋਰ ਪਲਾਨਸ ਮੋਰ ਚੋਇਸ
9: जब HK Movers का हो साथ लोकल एंड लॉन्ग डिस्टेंस के लिए टेंशन लेने की नहीं है बात HK Movers होम ऑफिस अपार्टमेंट्स एंड डिलीवरी बिग और स्मॉल वी मूव इट ऑल वी ऑल्सो शिप कार्स वी ऑल्सो डू स्टोरेज 30 years एक्सपीरियंस वी सर्व विद अ स्माइल HK Movers गिव अस अ कॉल मिस्टर हरमिंदर 416-524-6704 416-524-6704
10: हासल फ्री मूविंग के लिए HK Movers

0: certified health insurance specialist from Top Choice Insurance Agency.
1: मैं गुरप्रीत सिंह ढिल्लों वार्ड 9-10 तो रीजनल काउंसलर उम्मीदवार मैं 2014 तो 2022 तक तुहानू रिप्रेजेंट कीता मेरी एब्सेंस विच असी देखिया टैक्स इंक्रीज हाई क्राइम अते एक अजेही काउंसल जिस दे रेजिडेंस नू अनदेखिया कीता जदों मैं तुहानू रिप्रेजेंट कीता मैं टैक्स घट रखे बुजुर्गां ने बस सर्विस मुफ्त कीती सैटेलाइट पुलिस स्टेशन लियांदा अते हजारां नौकरियां लियांदियां सब तो इंपोर्टेंट मैं फजूल खर्च विरुद्ध आवाज उठाई अते तुहाडे कॉल्स अटेंड कीतियां हुण मैनूं करप्शन नूं रोकण लई तुहाडी मदद ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ 26 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਭਰਖੀ ਹੋਈ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਓ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਓ
2: ਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਐਂਡ ਪੇਡ ਫੋਰ ਬਾਈ ਦ ਕੈਂਪੇਨ ਆਫਿਸ ਆਫ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਢਿੱਲੋਂ

जुदाई में तो चल नहीं हुंदी। कैसी बात है, ए मुहब्बत दी गल हो रही है, इश्क दी गल हो रही है, उस इबादत दी गल हो रही है, उस प्यार दी गल हो रही है, उस नू एक दूजे दे जदों मिलन दा विछोड़ा पै जांदा उस वेले दी गल हो रही है। तेनू मेरी जिहड़ी जुदाई है ना, वो जुदाइयां नहीं चल हुंदियां। कहिंदे हुंदे किसे नू ना कोई बददुआ देनी होवे, जा तेनू किते विछोड़ा पै जावे, ते पता उहनू पैंदा जिहदे नाल विछोड़ा पै जांदा। जिस वेले इश्क दीआं प्रीतां लगियां हुंदियां ना, इश्क दी मुहब्बत दे विच एक दूजे चार अखियां दो हो जांदियां, ते मुहब्बत दे विच फिर तेरी जुदाई हरजीत सिंह जी।

मेरी ईद वाला चन कदों चढ़ेगा। क्या यार लिरिक्स, क्या लिख गए जनाब बनी है, क्या उन्होंने बातें। मेरी ईद वाला चन कदों चढ़ेगा, वाह।

0: क्या बात है,
1: दिखाई भी जो ना दे नजर भी जो आ रहा है वही खुदा है, वही खुदा है, वही खुदा है।
0: क्या बात है, क्या बात है।

0: जो खाना लाशऊर में जगमगा रहा है वही खुदा है, वही खुदा है, वही खुदा है।
1: क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छा जी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और ये चीज़ां मैनू याद है, मैं जिस वेले वसीम साहब गुलाम अली खान साहब के शो कराए सी, तकरीबन इस चेयर ते बैठे से खान साहब भी आ गए, तो कहते होंगे सी बड़ियां चीज़ां ना जिंदगी दे विच इस तरह जो म्यूजिक तो बिना भी सुन का नज़ारा आता है, तो आर्टिस्ट की पहचान करनी हो तो फिर थोड़ा जा म्यूजिक तो बिना पता लग जाता है, क्योंकि जिस वे म्यूजिक चलता होंगे फिर सज्जे खब्बे सुर हो जाए ना पता नहीं लगता किसी, जो चंगे बंदे वो समझ जाते होंगे। तो खान साहब दी गल्लां कई इस तरह दी मेरी जिंदगी दे विच, मेरे ना काफ़ी टाइम वो गड्डी सफर कर रहे थे टोरंटो, जो दो तीन दिन मेरे को रहे से इतने, वो चीज़ा बड़ी चीज़ा असर कर देंदी है। और मैं समझदा कि इस फनकार नूं तुसीं अक्तूबर 16 नूं सुनना है पूरे बैंड दे नाल, पूरे ऑर्केस्ट्रा नाल। सब तो वड्डी गल है नुमान साहब तुहाडा बैंड भी पूरा पाकिस्तान तो आया नाल, क्योंकि अपने जिहड़े मजीशियन हुंदे आ उहनां नूं पता हुंदा अख दे इशारे नाल फिर कित्थे की करना।
2: बजुर्ग कहिंदे हुंदे सी कि 100 कस्बी कसब कस्बी कहिंदे जिहनूं बहुत इलम याद होवे,
1: ठीक है,
2: 100 कस्बी ते इक पेती, अपने बंदे हुंदे, अपने म्यूजिशियंस हुंदे, अपना बैंड हुंदा या, वो मिथिये हुंदे या।
1: बिल्कुल सही गल।
2: ते वो अक्सर आर्टिस्ट आंदे या, मतलब आंदे या कले कले आ जांदे, इत्थों आके कर लिया, उस तरह दा, हालांकि आर्टिस्ट बहुत अच्छे हुंदे, उस तरह दा आउटकम नहीं दे पांदे, फीडबैक उस तरह दा नहीं आंदा, आवाम जिहड़ी आ डिप्रेस हो जांदी कि यार इहनां नूं तां बहुत अच्छा सुनिया सी, इत्थे आके इदां हो गया। तो वो बट जो फिर अपने बैंड ना परफॉर्मेंस होर होंदी है,
1: क्या बात है,
2: उदा मजा होंदा।
1: बड़ी अच्छी गल है, पूरा ऑर्केस्ट्रा पूरा बैंड जिहड़ा कि स्पेशली तौर ते पाकिस्तान तो नाल पहुंचा है। गुरशरण मान साहब मेरी लाइन ते हाजिर हो गया, जिहड़े स्पेशली तौर ते स्क्वाली नाइट नूं अटेंड कर रहे। गुरशरण जी की हाल चाल है सर?
3: सत श्री अकाल जी, बहुत वधिया, तुसीं सुणाओ। और साडे जिहड़े गेस्ट आए ने नूमन हैदर जी, इहनां नूं वेलकम जी।
1: जी
2: बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया सर।
1: तैयारी हो गई सर, पूरी आंदी सर?
3: हां जी बिल्कुल, एहो जिहे प्रोग्राम हुंदे ने जिन्हां नूं असीं मिस नहीं कर सकदे, एहो जिहे प्रोग्राम मिस करना समझ लाओ पाप ही है एक तरह दा, क्योंकि सुर वाले व्यक्ति तां मिलदे नहीं, दुनिया च बहुत घट ने।
1: जी जी जी,
3: दसदे हुंदे सी कि जिन्हां नूं इस जन्म विच सुर वाली गायकी मिलदी है उन्होंने पिछले जन्म विच मोती दान कीते हुंदे ने, और इन्होंने तो मेरा ख्याल गड्डियां दे गड्डे दान कीते होने।
1: क्या बात है, बड़ी अच्छी गल। और गुरशरण जी तुसीं भी इस पार्ट ऑफ शो का हिस्सा हो, तुसीं खुद एक बड़े वड्डे फनकार हो, बड़े वड्डे कैरेक्टर हो, बड़ियां मूवीज दे विच पंजाबी मूवीज विच इन्होंने काम किया है, और तुसीं अपने जिहड़े तुहानूं प्यार करन वाले आ, तुहाडे प्रेमी आ, तुसीं अपने वल्लों जिहड़े पंजाबी विरसा दे लिसनरशिप आ, पंजाबी विरसा दे परिवार दे जी आ, उन्हां नूं की कहना चाहोगे सर?
3: जी मैं तो यही कहांगा कि जेड़ी गल कन्ना विच जांदी है ना वो मिश्री वांगू घोल जांदी है, वो ओही सुनिया करो, बाकी बहुत कुछ दुनिया च हुण सुनन नूं आ गया ओनू थोड़ी जा इग्नोर करिया करो, परे रहा करो बाकी चीजा तो, गायकी सुर वाली सुनन दा ही मजा है। और मैनू ते हैरानी हुंदी है कि जेड़े साडे पंजाबी ऑडियंस ने इन्हां नूं कई बार सानू याद कराना पैंदा है एक दो बारी, एहो जिहे शो तां मतलब इह तां सोल्ड आउट है जी, मेरे वालों गारंटीड सोल्ड आउट है।
1: बड़ी मेहरबानी, और तुहाडा प्यार है, तुहाडा मुहब्बत है सर, और तुहाडे वर्गे जदों एक्सपर्ट्स जिहड़े कि इस शो दी शोभा करन, तारीफ करन, ते फिर डेफिनेटली जिहड़ा कि शो सोल्ड आउट होएगा। और तकरीबन दस दिन 80% 85% ऑलरेडी असीं शो खत्म कर बैठे हां, ते 20% देल हुण किन्नी हुंदी है, हाथी लंघ गया ते बाकी की रह गया तुहानूं पता ही है। सारे नूं यही मैसेज है, टिकटां जिहड़ियां लैणियां जल्दी लै लो। और गुरशरण जी बड़ी मेहरबानी सर तुहाडी, थैंक यू वेरी मच,
3: बहुत बहुत धन्यवाद, एक बार फिर तुहानूं बहुत बहुत वेलकम हैदर जी।
1: ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰਸਾ, ਟਿਕਟਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਿਲਣੀਆਂ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਟਿਕਟਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀਆਂ, ਇਹ ਨਾ ਟਿਕਟਾਂ ਵੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੇਚ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਕਾਲ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ, ਔਰ ਨਾ ਅਸੀਂ ਟਿਕਟਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਰੱਖੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵੀ ਆਈ ਪੀ ਗੈਸਟ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆ ਰਹੇ, ਬਹੁਤ ਡਾਕਟਰਸ ਆ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਲਾਇਰਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਅੱਛੇ ਅੱਛੇ ਸਾਡੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਲਾਇਰ ਆ, ਸੀ ਪੀ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਆ ਰਹੇ ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦੇ 'ਚ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਰੰਗ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਰੰਗ ਦੇ ਢਲ ਜੀ ਰੰਗ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਪੋਸਟਰ ਉੱਤੇ ਵੀ ਵੀ ਆਈ ਪੀ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ, ਔਰ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਆਈ ਪੀ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਸਿੰਘ ਹਰੀ ਦੇ ਸ਼ੋਅ, ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਟਰੀ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਸ਼ੋਅ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਕਰਾਏ ਆ, 17 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੋਅ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ, ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਫਨਕਾਰ ਐਸਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰਸਾ ਦੇ ਬੈਨਰ ਥੱਲੇ ਅਕਤੂਬਰ 16 ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਰੀਅਟ ਹੋਟਲ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਰਿਹਾ।

0: टोलना।
1: वाह भी वाह,
0: तेरे बिन नहीं लगना दिल मेरा टोलना, तेरे बिन नहीं लगना दिल मेरा टोलना।
1: वाह जी वाह।
0: हो दिल तेनू दे बैठी हवरे तू इसलिए कर नए बेपरवाया।
1: क्या बात है।

0: समोसा एंड स्वीट फैक्ट्री जिथे पाजी दिया सारी आइटमां $4.75 पर पाउंड तो शुरू ने। बेसन पिस्ता रसगुल्ले और जस्ट $5 पर पाउंड। तुहाडे इन्ने सालां दे भरोसे अते विश्वास कारण असी लेके आए कस्टमर्स एप्रिसिएशन सेल 2026 100% कैनेडियन मेड टॉप क्वालिटी स्वीट्स हुण 3 लोकेशंस तो सर्व करदे ने। 2 इन ब्रैम्पटन, 1850 एल्बन रोड इटोबिको। वधेरे जानकारी लिए कॉल करो 416-213-1165।
1: इंतजार हुण खत्म होया। रीमैक्स गोल्ड रियल्टी दे गौड़ी खुमान लेके आए हैं साउथ कैलडन विच प्रीमियम रिटेल अते ऑफिस स्पेस खरीदण दा एक होर सुनहरा मौका। पेश है कैलडन कमर्शियल सेंटर, हाईवे 10 अते हाईवे 410 दे प्राइम इंटरसेक्शन ते 15 एकड़ विच बन रहा एक नवा कमर्शियल डेवलपमेंट। रिटेल अते ऑफिस यूनिट्स हुण सेल लई अवेलेबल हन। कैलडन दी इस नवी कमर्शियल डेस्टिनेशन विच अपनी स्पेस अज ही पक्की करो। अपनी यूनिट अज ही बुक करन लई साडी टीम नाल कॉन्टैक्ट करो।
2: रोकी तू अपनी इंश्योरेंस किस तो करवांदा यार?
3: ओए कल्ला मैं नहीं, अपनी कम्युनिटी दा हर बंदा इंश्योरेंस एक्सपर्ट मोना मेंगी जी को।
2: वाह यार, नंबर ता दई मोना जी दा।
3: हां जी, तुसी भी नोट करो, इंश्योरेंस कोई भी होवे,
4: इंश्योरेंस फॉर यू दी मोना मेंगी जी।
3: जेडे लाइफ इंश्योरेंस, क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस, सुपर वीजा इंश्योरेंस अते हर तरह दी इंश्योरेंस दे लई भरोसेमंद नाम है। हुणे कॉल करो 416-509-1509 ते।
4: याद रखो, मोना मेंगी फ्रॉम इंश्योरेंस फॉर यू,
3: 416-509-1509
4: और विजिट insuranceforyou.ca।
5: खुदा ना करे अगर आपका कार एक्सीडेंट हो गया और आप कानूनी मदद लेना चाहते हैं, तो ना सिर्फ हम आपके हक का जायज ज्यादा से ज्यादा पैसा लेकर दिलवाते हैं, बल्कि अपनी फीस भी आपका क्लेम दिलवाने के बाद ही लेते हैं। और मैं आपकी अपनी अंजुम कुरैशी आपकी अपनी जबान बोलती हूँ, और हमारे पर्सनल इंजरी लॉयर्स की टीम आपके क्लेम को प्रोफेशनली हैंडल करते हैं। और अगर अपने क्लेम के सिलसिले में आप हमारे लॉयर के साथ मीटिंग करना चाहते हैं, तो हमारी कंसल्टेंसी बिल्कुल फ्री है। आज ही मुझे कॉल करें, आपके कार एक्सीडेंट केस में आपका इन्फॉर्मेशन लेना आपका हक है।
6: 416-570-0157। नजर बदलो, नजारे बदल जाएंगे। आप भी अपनी जिंदगी की खूबसूरती को देखें स्पेक्स एक्सप्रेस के साथ, जहां है वर्ल्ड क्लास क्वालिटी डिजाइनर सनग्लासेस, आई ग्लास फ्रेम्स एंड लार्ज सिलेक्शन ऑफ कॉन्टैक्ट लेंसेज।
7: गेट सिलेक्टेड फ्रेम रेगुलर सिंगल विजन लेंसेज फॉर जस्ट $129। 35 रेजोल्यूशन ड्राइव ब्रैम्पटन इन वॉलमार्ट प्लाजा। कॉल 905-460-8888, दैट्स 905-460-8888।
6: सर्विंग फ्रॉम 2 लोकेशंस, बेस्ट सर्विस बेस्ट प्राइस, स्पेक्स एक्सप्रेस के साथ।
8: ताजिया सब्जियां, फ्रेश फल फ्रूट, वधिया ग्रोसरी ते इंडिया तो आया तुहाडा मनपसंद सामान मिलेगा हुण वधिया रेट्स ते, क्योंकि तुहाडे अपने शहर विच आ गया अनाजमा। रोज दी ग्रोसरी होवे, चावल दाला आटा देसी घ्यो मसाले टी स्नैक्स जां फिर इंडियन किचन दा कोई भी जरूरी सामान, सब कुछ मिलेगा अंडर वन रूफ। फ्रेशनेस वैरायटी क्वालिटी ते वधिया प्राइसेस लई अज ही विजिट करो अनाजमा, एयरपोर्ट रोड एंड मेफील्ड रोड दे कॉर्नर ते एट 6141 मेफील्ड रोड यूनिट।
9: ਦੋਸਤੋ ਮੈਂ ਰਵਿੰਦਰ ਵਡਾਲੀ ਤੇ ਮੈਂ ਆ ਰਹੇ ਜੀ 11 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਟੋਰਾਂਟੋ ਰੋਜ਼ ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਮਾਂਡ ਦੇ
10: ਤਾਂ ਬਦਲਾਮ ਕਰਤੀ ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਦੀ ਮਿੱਠੀ ਚੋਰੀ ਲੋਕਾਂ ਬਸ
9: ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਸ਼ੋਅ ਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵੀ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜ਼ੋਰ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਰਿਪੀਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ।

0: यारों के साथ जश्न या फैमिली के साथ करना हो जश्न, ढाबा ऑन द फॉल्स आए, टेस्ट का वादा और चॉइस भी ज्यादा।
1: दिल्ली वाला बटर चिकन, रोगन जोश, सोया चाप, बेस्ट वेज नॉन वेज बिरयानी इन द टाउन, बेस्ट वेज नॉन वेज एपेटाइजर या माउथ वाटरिंग मेन कोर्स खाना हो तो सीधा चले आए ढाबा ऑन फॉल्स, द बेस्ट फूड इन नायग्रा फॉल्स। LLBO एंड बियर ऑन टैप ऑल्सो अवेलेबल, वॉकिंग डिस्टेंस फ्रॉम द फॉल्स, फ्री पार्किंग। विजिट 5039 सेंटर स्ट्रीट नायग्रा फॉल्स, कॉल 905-358-0864,
0: 905-358-0864, ढाबा ऑन द फॉल्स।

0: 416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551- कैनेडा दे स्टडी वीजा एक्सप्रेस एंट्री कैनेडियन एक्सप्रेस एंट्री स्पाउसल फाइल पेरेंट्स पीआर सुपर वीजा नैनी वर्क परमिट फार्मर इन्वेस्टर या सेल्फ एम्प्लॉयड दी फाइल गल की इमिग्रेशन दी हर प्रॉब्लम दा सॉल्यूशन लैन लई कम्युनिटी दे जाने पहचाने अते तजुर्बेकार इमिग्रेशन कंसल्टेंट गैरी विर्क नु मिलो
1: कोई केस रिफ्यूज हो गया या अपील ते चला गया होवे इमिग्रेशन दा कोई भी मसला हमेशा याद रखो इको ही ना अते इको ही था CIC इमिग्रेशन हुणे ही कॉल करो 416-456-6161
2: कनेडा विच रहंदे हुए हर परिवार को लाइफ इंश्योरेंस होनी बहुत जरूरी है अपने परिवार दी फाइनेंशियल सिक्योरिटी ते फ्यूचर प्लानिंग लई
3: इसे लई मैं अपनी ते वाइफ दी इंश्योरेंस पॉलिसी प्राइम इंश्योरेंस ते सिमराज सिद्धू तो ही करवाई है
4: जेकर तुसी भी किसी तरह दी लाइफ इंश्योरेंस मॉर्गेज इंश्योरेंस डिसेबिलिटी इंश्योरेंस क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस बारे सोच रहे हो ता सब तो वध कवरेज ते सही पॉलिसी तुहानू सिमराज सिंह सिद्धू ही दवा सकते ने पेरेंट्स लई सुपर वीजा इंश्योरेंस या विजिटर वीजा इंश्योरेंस दी बेस्ट कोट लई हुणे कॉल करो 416-456-3381 ते 416-457-3381 ते
2: नाले जेकर तुसी कोई इंश्योरेंस पॉलिसी पहले ही लई हुई है तो तुसी बहुत ही ज्यादा पैसे पे कर रहे हो बिल्कुल फ्री विच पॉलिसी रिव्यू करवा के तुहाडे पैसे बचाओगे हुने ही सिमराज सिंह सिद्धू नु कॉल करो 416-457-3381 416-457-3381
5: ਦੋਸਤੋ ਦੇਸ ਪਰਦੇਸ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਰੇਡੀਓ ਨੂੰ ਜਾਂ ਚਲੋ AM 530 ਤੇ 24/7 ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਦੇਸ ਪਰਦੇਸ ਨੂੰ ਲਾਈਵ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਲੌਗਇਨ ਕਰੋ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਨੂੰ www.desparadesradio.com ਜਾਂ www.desparadestv.com ਲਾਈਵ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਲਾਈਵ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਲਓ ਜੇ ਵਾਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ IPTV ਬਾਕਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੈਕਸ਼ਨ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਸ ਪਰਦੇਸ ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਕਲੈਕਟ ਕਰੋ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੇਖ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ 24/7

0: कनाडा दे स्टडी वीजा एक्सप्रेस एंट्री कैनेडियन एक्सप्रेस एंट्री स्पाउसल फाइल पेरेंट्स पीआर सुपर वीजा नैनी वर्क परमिट फार्मर इन्वेस्टर या सेल्फ एम्प्लॉयड दी फाइल गल की इमिग्रेशन दी हर प्रॉब्लम दा सॉल्यूशन लैण लई कम्युनिटी दे जाने पहचाने अते तजुर्बेकार इमिग्रेशन कंसल्टेंट गैरी विर्क नु मिलो
1: कोई केस रिफ्यूज हो गया या अपील ते चला गया होवे इमिग्रेशन दा कोई भी मसला हमेशा याद रखो इको ही ना अते इको ही था CIC इमिग्रेशन हुणे ही कॉल करो 416-456-6161
2: कनेडा विच रहंदे हुए हर परिवार को लाइफ इंश्योरेंस होनी बहुत जरूरी है अपने परिवार दी फाइनेंशियल सिक्योरिटी ते फ्यूचर प्लानिंग लई
3: इसे लई मैं अपनी ते वाइफ दी इंश्योरेंस पॉलिसी प्राइम इंश्योरेंस ते सिमराज सिद्धू तो ही करवाई है
4: जेकर तुसी भी किसे तरह दी लाइफ इंश्योरेंस मॉर्गेज इंश्योरेंस डिसेबिलिटी इंश्योरेंस क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस बारे सोच रहे हो ता सब तो वध कवरेज ते सही पॉलिसी तुहानू सिमराज सिंह सिद्धू ही दवा सकते ने पेरेंट्स लई सुपर वीजा इंश्योरेंस या विजिटर वीजा इंश्योरेंस दी बेस्ट कोट लई हुणे कॉल करो 416-456-3381 ते 416-457-3381 ते
2: नाली जेकर तुसी कोई इंश्योरेंस पॉलिसी पहले ही लई हुई है तो तुसी बहुत ही ज्यादा पैसे पे कर रहे हो बिल्कुल फ्री विच पॉलिसी रिव्यू करवा के तुहाडे पैसे बचाउणगे हुणे ही सिमराज सिंह सिद्धू नु कॉल करो 416-456-3381 416-457-3381
5: इस लॉन्ग वीकेंड ते अपने सिनेमा घर विच देखो ਇਹ ਦਿਨ ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ ਸਟਾਰ ਕਾਸਟਿੰਗ ਹਰਭਜਨ ਮਾਨ ਔਰ ਅਪਕਾਸ਼ ਮਾਨ
6: ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਬਾਪੂ ਜੀ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸਾ ਸੀ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅੰਦਰੋਂ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਕਿ ਜਾਣਾ ਆਪਾਂ ਸਭ ਨੇ ਕਦੋਂ ਫਿਕਰ ਚ ਪਏ ਹੋਏ
7: ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਲਾਂਡਰਾ ਰੋਡ ਤੇ ਨਾ ਦੋ ਪਲਾਟ ਲੈ ਲੈਨੇ ਆ
5: ਦਿਨ ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ ਵੇਖੋ ਆਪਣੇ ਨੇੜਲੇ ਸਿਨੇਮਾ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਲਵਰ ਸਿਟੀ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਲੈਂਡਮਾਰਕ ਸਿਨੇਮਾ ਪੈਨ ਸੈਂਟਰ ਸੈਂਟ ਕੈਥਰਨ ਤੇ ਜੈਕਸਨ ਸਨ ਹਮਿਲਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਦਿਨ ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ ਸਟਾਰ ਕਾਸਟਿੰਗ ਹਰਭਜਨ ਮਾਨ ਅਪਕਾਸ਼ ਮਾਨ ਵੇਖੋ ਆਪਣੇ ਨੇੜਲੇ ਸਿਨੇਮਾ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੌਂਗ ਵੀਕਐਂਡ ਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ
8: ਹੈਲੋ AM 530 ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਦੇਸ ਪ੍ਰਦੇਸ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਰੇਡੀਓ
5: ਟੁਡੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਵ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਣੇ ਕਾਲ ਕਰੋ 905-564-6444
8: 905-564-6444

0: पेट इशू है, थायराइड है, कोलेस्ट्रॉल है, डायबिटीज है, एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, थानू आर्थराइटिस हो गई, स्किन दे इशू है, एक्जिमा हो गया, सोरायसिस हो गया, ऑटिज्म खास करके बच्चे ने पूरी दुनिया तो मेरे को बच्चे ने ऑटोमोबाइल डिजीज है, अख नक गले की बीमारी, कोई बीमारी हैगी है, होम्योपैथी इज आर बेस्ट। लगभग जो 50 साल पहले मैं होम्योपैथी डिग्री की है, पढ़ाई की है, साड़ी पढ़ाई इक्वल टू फैमिली डॉक्टर होंगी है, ठीक है जी, जो पांच मिनट के अंदर पता लग जाता बीमारी की हैगी है, लेकिन टेस्ट केवल कन्फर्म करने वास्ते अपना टेस्ट कराने, ठीक है, लेकिन पता लग जाता सारा कुछ। थोड़ी जी एसिडिटी बारे मैं जानकारी दूंगा नवी जी, एसिडिटी ना लोग कई बार लोगों को पता ही नहीं लगता भी एसिडिटी हैगी है, कई बार ब्लोटिंग होंगी है, गैस बन रही है, आईबीएस है, कोलाइटिस है, बहुत तरह की बीमारियां होंगे ने। एसिडिटी इनू आप हार्ट बर्न कहने, हार्ट बर्न जी ये साढ़े ए मोस्टली जो थोड़ा जो फूड पाइप है वो बर्निंग होंगी उतना करके एसिडिटी आप कहने साढ़े पेट के जो स्टमक हों हाइड्रोकोलिक एसिड हों जाके साढ़े फूड पाइप लगता है जो है यह एसिडिटी कहने आप जो है, लेकिन होर भी बहुत बीमारियां ने, किसी ने भी कोई भी प्रॉब्लम हैगी है 647-818-0055-647-818-0055 तक कभी भी कॉल करके आ सकते हो। मेरी क्लिनिक 20 मेरी टाइम टूरे बिलेवार्ड यूनिट नंबर 2 होम डिपो वाला प्लाजा 647-818-0055-647-818-0055 तक कभी भी कॉल करके आ सकते हो। थैंक यू नवी टाइम, थैंक यू वेरी मच,
1: वेरी गुड। नंबर एक क्विक है 647-818-0055-647-818-0055। कुलदीप जी बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। सब प्रोग्राम पंजाबी रहा ते गलबात करिए या गाना ला दी एक, मैं थोड़े कन्फ्यूज हाँ क्योंकि गल्लां बातां भी तैयार ने ते गल्लां बातां तो तुसीं जिन्नी मर्जी करा लो, बट खैर एक मैसेज लै लीए ते फिर एक गाना लाने ते फिर आपां खुल के गल्लां बातां थोड़े नाल जरूर जरूर जरूर करदे आ।
2: मैं सुखवंत सिंह तुहाडा वार्ड 9 एंड 10 तो रीजनल काउंसलर उम्मीदवार, मैं एक वकील हाँ अते मैं कैनेडा दी सब तो वड्डी लॉ फर्म विच काम करदा हाँ। ब्रैम्पटन दे निवासी वधे हुए प्रॉपर्टी टैक्स अते क्राइम तो बहुत दुखी हाँ, सानू रीजनल काउंसलर चाहिदा जो इन्हां मुद्दियां दी आवाज उठावे। अक्टूबर 10-11-16-17 दी एडवांस वोटां ते मैनू वोट पाके कामयाब करो। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट sukhmansingh.com, ऑथराइज्ड बाय द सुखवंत सिंह कैंपेन।
1: अर्जुन ढिलों का एक गीत आया, मैनू बड़ा डिफरेंट जहा लग्या यार, आई डोंट नो तुसीं किन्ना कि इंजॉय किया, बट म्यूजिक बड़ा यूनीक है, जिहड़े कह लो कि सुरते अर्जुन गा रहे हैं वो भी म्यूजिक चेंज हो रहा है, सुनो थोड़ा जिहा तुहानूं पता लगूगा।